101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 28 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवन्यू पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित

0: की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष

0: को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 500,000 आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। आपसे कुछ ही पलों में

6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रही हैं श्रृंखला गदितत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इस श्रृंखला का पांचवा भाग। प्रस्तुति है चारुबाला खरे की। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमें राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार गायक हेमंत कुमार पर। सुनिए इसका पुनः प्रसारण 9:30 पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहतनामा जीवन शैली और योग। योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से गुनगुनाइए सुरीला सफर में। 2:30 पर सदाबहार नगमे। तीन बजे सुनिए सखी सहेली कार्यक्रम। 4 बजे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे में सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुति है कल्पना शेट्टी की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी जीभ की तपस्या। लेखन है डॉक्टर कुमारी का। निर्देशन है स्वतंत्र कुमार ओझा का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए कार्यक्रम। रात 10 बजे छाया गीत कार्यक्रम पेश होगा। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: गजतत वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: वायलिन और सारंगी के बाद गज वाला वाद्य इसराज प्रचलित है। इसराज का यही राज है कि यह कब बना, कहां बना और किसने बनाया यह कोई नहीं जानता। कुछ विद्वानों का मत है कि यह सारंगी और सितार का मिश्रण है। कुछ गुणियों का मानना है कि यह सारिंदा और सारंगी का मिश्रण है। कुछ संगीतज्ञ इसकी उत्पत्ति का आधार केवल सारंगी मानते हैं। जो संगीतज्ञ सारंगी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं उनका इस संबंध में कहना है कि मुगल काल में महिलाएं जब हरम में गायन किया करती थी तब उन्हें सारंगी की संगति उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारंगी वादक अधिकतर पुरुष ही हुआ करते थे। महिलाएं सारंगी बजाने में असमर्थ हुआ करती थी, क्योंकि सारंगी यह वादन में कठिन ही नहीं बल्कि वह नाखूनों की सुंदरता को भी नष्ट करती थी। इसीलिए सारंगी के ऊपरी भाग को कुछ लंबा कर इसमें पर्दे लगाए गए। इसराज की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता यह भी है कि सारंगी सामान्यतः कोठों पर बजाई जाती थी। रावण हत्था, सारिंदा तथा चिकारी आदि गजवाद्य लोक संगीत में प्रयुक्त किए जाते थे। इसलिए अपने लिए गज का एक नया सुविधाजनक वाद्य निर्माण करना था, जिसे उसने इसराज नामक वाद्य बनाकर किया। प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में इसराज का उल्लेख नहीं मिलता है। 18वीं शताब्दी तक उर्दू एवं बांग्ला कृतियों में भी इस वाद्य का वर्णन उपलब्ध नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक आधुनिक वाद्य है। यह भी संभव है कि इस वाद्य की निर्मिति मयूर या ताउस वाद्य के आधार से की गई हो। तो आइए अब हम अलाउद्दीन खां का इसराज वादन सुनते हैं। राग है भैरव।

अब हम इसके आकार और प्रकार पर विचार करेंगे। इस वाद्य के तीन आकार प्रचलित हैं। इसमें कुंडी और दांड के दो मुख्य भाग होते हैं। इनका नाप अलग अलग होता है। कुंडी के ऊपर सारंगी के समान चमड़ा मढ़ दिया जाता है। इसी चमड़े पर घुरज की स्थापना करते हैं। दांड में 16 से 19 तक पर्दे लगाए जाते हैं। इस राज में सामान्यतः मुख्य चार तार होते हैं। बाज के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर में, इसके बाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाया जाता है। इसमें तरप के तार भी लगाए जाते हैं, जिनकी संख्या 15 से 20 तक होती है। इन तरबों को राग के अनुसार अथवा अचल थाट में मिलाया जाता है। तरबों के लिए पीतल के स्थान पर फोलाद के तारों का प्रयोग किया जाता है। इस राज को बजाने का यह तरीका है कि इसको पालथी मारकर उसकी कुंडी को नीचे की ओर रखकर या फिर गोद में रखकर या घुटने पर टिकाकर वादन करते हैं। दाहिने हाथ में गज पकड़कर तारों पर गज संचालन किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से स्वर निकाले जाते हैं। रविंद्र संगीत में इसका प्रयोग बहुत ही किया जाता है, इसलिए इस राज को बंगाल की सारंगी भी कहते हैं। कुछ कलाकार इस पर एकल वादन कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। अब हम श्री आशीष बंदोपाध्याय का इस राज पर बजाया गया राग जौनपुरी सुनते हैं।

ब्रजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल।

0: हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में सुन रहे थे अमानत फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सलील चौधरी का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
0: आपके जीवन में खोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सजा फिल्म से सुन रहे थे आप संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज।

से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 7:30 से होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। गैर फिल्मी गीत गजल सुनिए सुबह 8:15 से। समसामयिक विषयों पर आधारित दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का समय रहेगा सुबह 8:30 से, जिसमें आज की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर। साथ ही कार्यक्रम में वार्ता सुनवाएंगे सांख्य दर्शन कुछ जानने योग्य बातें। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रमेश दत्त। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत सुनिए सुबह 9 से, और श्रोताओं से हम सीधे जुड़ेंगे हेलो अयोध्या के माध्यम से सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल से आज की कड़ी सुनिए सुबह 11:55 से। अवधि लोकगीत सुनिए दोपहर 12:30 से कार्यक्रम लोक रंग में। फेसबुक फरमाइशें हम शामिल करेंगे दोपहर 1 से कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और गैर फिल्मी गीत गजल सुनिए दोपहर 2 से कार्यक्रम गीतांजलि में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और गर्व करें स्वयं की संस्कृति एवं सभ्यता पर, ये दो चर्चा के विषय होंगे आज के कार्यक्रम नारी जगत में दोपहर 2:30 से। साथ ही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे परमात्मा दास जी की वार्ता गौ पशु का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व विषय पर, साथ ही होंगे कुछ सौंदर्य टिप्स भी। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी से आज की कड़ी सुनिए दोपहर 3 से। युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युव वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 से, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारतीय इतिहास से आज जानिए पूर्वी गंग राजवंश के बारे में, साथ ही होगा चक्रव्यूह अंक भी। कार्यक्रम लोक संगीत सुनिए शाम 5:30 से। कार्यक्रम शाम सुहानी शाम 6:10 से, और गूंजे स्वर गांव के सुनिए शाम 6:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी में चर्चा सुनिए खरीफ उड़द मूंग की खेती पर। भेंट वार्ता सुनवाएंगे डॉक्टर अजय कुमार यादव से गर्मी के मौसम में मछली पालकों हेतु समसामयिक कार्य विषय पर। एक और भेंट वार्ता सुनिए डॉक्टर अवतींद्र मिश्र से, विषय होगा किसान कल्याण की योजनाएं और खेती बचाओ अभियान। फिल्मी गीत कार्यक्रम गीत गुंजन के अंतर्गत सुनिए रात्रि 8:15 से। गैर फिल्मी गजलें सुनिए महफिले गजल में रात्रि 9:15 से। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण सुनिए रात्रि 10 से आकाशवाणी लखनऊ से। इन सब कार्यक्रमों के अलावा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम और प्रादेशिक समाचार और राष्ट्रीय समाचार अपने नियत समय पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। तो ये था संक्षिप्त विवरण हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजय

0: है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल SIT पहुँची अयोध्या, जाँच शुरू। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कल से शुरू हो गईं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी।
3: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स है जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान से हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसान स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ कल लखनऊ पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

0: इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिक करण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। SIT की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि SIT के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के DM के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल वहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
4: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

0: मिशन 2023 के तहत उत्तर प्रदेश नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रकार की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT पहुंची अयोध्या। जांच शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

आज के खिलते दिन का आरंभ हम करते हैं ईश्वर वंदन के साथ। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में इस भजन के साथ।

प्रभु से मिलन की ऐसी आस जगी कि हम अपना सर्वस्व भूल गए। याद है तो बस प्रभु का कोमल चरण, जहां हम अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। और जब हम अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में सौंप देते हैं, फिर किस बात की चिंता। ओम व्यास और साथियों के स्वर में ये भक्ति रहे।

0: धारा बह रही है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम अमृत कलश में। कुछ और भक्ति रचनाएं होंगी इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: Digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: हरिहरन के स्वर में ये हनुमान भक्ति रचना आपने सुनी।
1: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
4: नहीं अछूता हो जिस
3: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

0: शरण और नंदिनी शरण की गाय इस भक्ति रचना के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम अमृत कलश आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित किया गया 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
3: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300।

0: मंगवा कि पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर

पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है।

0: लेकर दिशा ने हुर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडो को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज जल डमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और

0: स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनिए कार्यक्रम सुर संगम।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: आज के कार्यक्रम सुर संगम की पहली पेशकश लकी अली की आवाज में ये गीत।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।

0: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
1: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
0: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
1: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।

मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर, उसे समझने में दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो।

गुलजार के लिखे कलाम को आवाज दी थी जगजीत सिंह ने। इसी गजल के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का कार्यक्रम सुर संगम। कार्यक्रम सुर संगम आपने सुना आकाशवाणी की।

0: अयोध्या केंद्र से सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।

कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिवादन है। आज के कार्यक्रम में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सांख्य दर्शन कुछ जानने योग्य बातें विषय पर और वार्ताकार होंगे डॉक्टर रमेश दत्त। पर उससे पहले हम आपसे कर लेते हैं आज की बात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को दुनिया भर में प्रवासी श्रमिकों के बलिदानों को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवारों को पैसे वापस भेजते हैं। ये प्रेषण मात्र वित्तीय लेन देन नहीं है बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा और अनगिनत समुदायों के विकास के लिए सहायक है। इसके साथ ही आर्थिक असुरक्षा प्राकृतिक और जलवायु संबंधी आपदाओं और वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों की वापसी पर प्रकाश डालता है। प्रेषण और निवेश के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों में प्रवासी अमूल्य योगदान देते हैं, विशेष रूप से गरीबी कम करने, भूख कम करने, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, स्वच्छ पानी और असमानताएं कम करने में इनका विशेष सहयोग होता है।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, सांख्य दर्शन कुछ जानने योग्य बातें। वार्ताकार हैं डॉक्टर रमेश दत्त।
2: वैदिक षट दर्शनों में सांख्य दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है। रामायण और महाभारत में सांख्य दर्शन की चर्चा है।

इसलिए यह दर्शन रामायण और महाभारत से भी प्राचीन है। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन 6 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कुल मिलाकर 527 सूत्र हैं। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन करता है। पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक ईश्वर जो जड़ प्रकृति से ब्रह्मांड का निर्माता है और दूसरी प्रकृति जो इस ब्रह्मांड का भोगता है। आत्माएं असंख्य हैं जो इस ब्रह्मांड के भोगता हैं। प्रकृति से लेकर स्थूल ब्रह्मांड तक जितने भी जड़ पदार्थ हैं, वे सब आत्मा के अनुभव और मोक्ष के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। प्रत्येक के अलग अलग गुण, कर्म और स्वभाव हैं। इसके अतिरिक्त ये तीनों शाश्वत हैं और इनका कोई उपादान कारण नहीं है। सांख्य दर्शन की शुरुआत इस सूत्र से हुई है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थः, अर्थात 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुखों का निवारण ही आत्मा का अंतिम उद्देश्य है, जिसे मोक्ष कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो पीड़ा, बाधा, क्लेश, बंधन, प्राधीनता, अशांति और जिससे बल, बुद्धि और आयु का नाश हो, वह दुख है। मनुष्य को जिन वस्तुओं से दुख प्राप्त होता है, वे सब वस्तुएं जड़ प्रकृति के 3 कणों सत्व, रजस और तमस से बनी हुई हैं। दुख ही बंधन है और बंधन का कारण अविवेक है। अविवेक का अर्थ है पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति का वास्तविक स्वरूप न जानना। अविवेक के कारण ही चेतन स्वरूप आत्मा जड़ स्वरूप प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लेती है, यही बंधन है और दुख भी। विवेक होने पर जब आत्मा को प्रकृति से भिन्न अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। प्रकृति और पुरुष में भेद जानने के लिए सृष्टि रचना का ज्ञान आवश्यक है। वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक सृष्टि रचना का मूल कारण एनर्जी को मानते हैं, परंतु महर्षि कपिल के अनुसार सृष्टि रचना का मूल उपादान कारण जड़ प्रकृति है। यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसे ना तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है और ना किसी वैज्ञानिक यंत्र से। वर्तमान जगत रचना से पहले प्रकृति, जिसे भौतिक जगत का उपादान कारण कहते हैं, उपस्थित थी। उसके सत्व, रजस और तमस कण या परमाणु साम्यावस्था में थे। उसमें कोई क्रिया नहीं थी। जब ईश्वर ने प्रकृति की साम्यावस्था को भंग किया, उसमें गति उत्पन्न की, तो सृष्टि रचना प्रारंभ हो गई। इस बात को महर्षि कपिल ने एक सूत्र के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट किया है। सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो हंकारो हंकारात, पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। सृष्टि रचना क्रम से होती है। पहले सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं, तब स्थूल बनते हैं। कपड़ा बनने से पहले धागा बनता है। इसी प्रकार मूल प्रकृति से सर्वप्रथम महत अर्थात बुद्धि बनी, यह निश्चय करने का साधन है। महत से अहंकार बना। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, घमंड तो एक भाव है। यहां अहंकार एक सत्तात्मक पदार्थ है, उपकरण है, जिसके माध्यम से जीवात्मा को अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है। जीवात्मा के पास अहंकार नामक उपकरण ना होता तो वह हमेशा बेहोश पड़ा रहता। अहंकार से अस्थूल महाभूतों के आधार पंच तन्मात्र बने, वाह्य पदार्थों के ज्ञान के साधन पंच ज्ञानेन्द्रियां बनी, कर्म करने के साधन पंच कर्मेंद्रियां बनी, और इन दोनों इंद्रियों को इनके विषयों में प्रवृत्त कराने वाला मन बना। ये 11 इंद्रियां अहंकारिक हैं, भौतिक नहीं। जो इन्हें भौतिक कहते हैं, वे सांख्य दर्शन का अध्ययन न करने के कारण ही ऐसा कहते हैं। पंच तन्मात्रों से पंच स्थूल भूत बने। इस प्रकार ये 24 अचेतन जगत हैं और इनमें बैठा 25वां चेतन पुरुष है। चेतन तत्व भी 2 वर्गों में विभक्त हैं, एक ईश्वर और दूसरी जीवात्मा। ईश्वर एक है तथा जीवात्मा अनेक हैं। यहाँ पुरुष से अभिप्राय जीवात्मा है। ये समस्त तत्व हैं जिनके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर अचेतन तथा चेतन के भेद का साक्षात्कार करना है। यह सूत्र भौतिक विद्या के मूल तक पहुँचा देता है, ब्रह्मांड का चीरफाड़ कर देता है। जब तक हम ब्रह्मांड के मूल का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तब तक विवेक का उदय नहीं होता, क्योंकि जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं
वह सब ब्रह्मांड के मूल तत्व।

0: से ही बनते हैं। मूल को समझ लेने से शेष बातें समझ में आ जाती हैं। पुरुष और प्रकृति के मध्य अभेद ही अविवेक है, विवेक है पुरुष और प्रकृति के मध्य। दोनों का भेद जानकर उनके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना यह ध्यान और समाधि की अवस्था में ही संभव है। पुरुष और प्रकृति के मध्य भेद का विवेक होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष कोई शुष्क अवस्था नहीं है, यह ब्रह्म रूपता की अवस्था है। यह विषय अत्यंत गहन और गंभीर है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन करने वाले सांख्य दर्शन को मध्यकालीन भाष्य व टीकाकारों ने भ्रांति से अनीश्वरवादी घोषित कर दिया। यही कारण है कि आज के विद्वान और जनमानस भी इसे अनीश्वरवादी दर्शन ही कहते हैं। यह बड़े दुख की बात है। मेरे विचार से सांख्य दर्शन के अनीश्वरवादी होने का भ्रम निम्नलिखित कारण से हुआ। पहला कारण यह है कि महर्षि कपिल द्वारा रचित मूल ग्रंथ सांख्य सूत्र के स्थान पर मध्यकाल के विद्वानों ने सांख्य कारिका को मूल ग्रंथ माना। इस ग्रंथ में ईश्वर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ के आधार पर सांख्य दर्शन के अनीश्वरवादी होने का भ्रम पैदा हुआ। दूसरा कारण यह है कि ईश्वरा सिद्धे सांख्य सूत्र के पूर्वा पर प्रसंग पर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इस सूत्र के आधार पर सांख्य दर्शन के अनीश्वरवादी होने का भ्रम हुआ। आधुनिक युग के महान दार्शनिक स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांख्य दर्शन को ईश्वरवादी माना। वे सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं, जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। स्वामी दयानंद ने सांख्य दर्शन पर भागुरी मुनि की टीका पढ़ने का सुझाव दिया है। सांख्य सूत्र पर यह एक बहुत प्राचीन ईश्वरवादी टीका रही होगी, किंतु अब यह टीका उपलब्ध नहीं है। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि सांख्य दर्शन और इसके रचयिता महर्षि कपिल की वैदिक साहित्य में बड़ी प्रशंसा की गई है। श्वेता सत्र उपनिषद में महर्षि कपिल को ब्रह्मज्ञानी माना गया है। महाभारत में कहा गया है कि संसार में जो ज्ञान है वह सब सांख्यों से ही प्राप्त होता है। महाभारत में कपिल की गणना ब्रह्मा के साथ मानस पुत्रों में की गई है। महाभारत में महर्षि कपिल के अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें परमर्षि की उपाधि दी गई है। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि सा उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। यदि महर्षि कपिल अनीश्वरवादी होते तो भगवान कृष्ण अपनी तुलना कपिल मुनि से क्यों करते? सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है, यह बात स्वयं सांख्य सूत्रों से ही सिद्ध होती है। ईश्वरा सिद्धे है सूत्र से सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी सिद्ध नहीं होता। सूत्र का पूर्वा पर प्रसंग देखने पर इसका यह अर्थ निकलता है कि ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है, वह जगत का निमित्त कारण है। इसके अतिरिक्त सा ही सर्वित सर्वकर्ता ईदृशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा न ईश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ और श्रेष्ठ का रचयिता है। ईश्वर का होना स्वयं सिद्ध है, ईश्वर के अधिष्ठाता होने पर ही फल की सिद्धि होती है, केवल कर्मों के द्वारा नहीं। समाधि सुसुप्ति और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है, अर्थात जीवात्मा ईश्वर के आनंद को भोगता है। यदि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी होता तो जीवात्मा के लिए ब्रह्म रूपता क्यों बताता? इस प्रकार स्पष्ट है कि सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है। यह दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, यह एक मोक्ष शास्त्र है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसे पढ़ने से विवेक ख्याति अर्थात सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे आध्यात्म के नाम पर कोई व्यक्ति उसे ठग नहीं सकता। इसके बाद वह जीवन में कभी भ्रमित नहीं होगा, वह अपने आत्मस्वरूप को जानकर प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएगा और जीवन के परम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त कर लेगा।
1: सांख्य दर्शन कुछ जानने योग्य बातें। डॉक्टर रमेश दत्त ने इस विषय पर बहुत विस्तार से जानकारी दी और उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस विषय पर अच्छे खासे

0: जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
1: आपके संदेश
2: संदेश से आते हैं,
1: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
3: कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

श्रोताओं, गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में हीट वेव से शारीरिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही अग्निकांड भी बढ़ते हैं। ऐसे में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि गर्मी के मौसम में अग्निकांड की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसमें थोड़ी सी चूक के कारण लोगों के खेतों में, घरों में आग लग जाती है। आग लगने के कारण जनधन की क्षति तो होती ही है, जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, इस विषय पर ध्यान दें। घरों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पुरानी वायरिंग को समय समय पर बदलते रहें। एसी को लगातार कई घंटों तक ना चलाएं, बीच बीच में कुछ घंटों के लिए बंद कर दें। किसी भी छोटी चिंगारी को अनदेखा ना करें, क्योंकि वो बड़ी आग में बदल सकती है। खाना बनाते समय पानी से भरी बाल्टी हमेशा अपने साथ रखें। खाना बनाने के बाद चूल्हे के रेगुलेटर को अच्छे से बंद कर दें। मोमबत्ती और अंगीठी का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो सुरक्षित स्थान पर रखें। माचिस, लाइटर और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खेतों में अपनी फसल को काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। तो ये कुछ विषय थे जिन्हें आपको करना है और क्या नहीं करना है, इस पर भी एक प्रकाश डाल लेते हैं। घरों में तारों से निकलने वाले चिंगारी को नजरअंदाज ना करें। बिस्तर पर धूम्रपान ना करें। खड़ी फसल के किनारे खाना ना बनाएं। चूल्हे की चिंगारी व गरम राख कूड़े के ढेर को खुले में ना फेंकें। जब तक सूखी फसल खड़ी हो तब तक खेतों के आसपास खरपतवार ना लगाएं। रसोई घर में अनावश्यक ज्वलन पदार्थ ना रखें। खेतों में बीड़ी, सिगरेट आदि का जलता हुआ ना फेंकें।

जी हाँ, हमें अपने देश पर गर्व है, हमें उसका सम्मान, उसके झंडे की रक्षा करनी है। चलिए अब कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चलते चलते आज की कुछ खास खबरें समाचार पत्र से। समाचार पत्र अमर उजाला के माई सिटी अंक के अनुसार रन फॉर योग से विश्व योग दिवस का हुआ आगाज। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ सोमवार को राम की पैड़ी पर रन फॉर योग और दैनिक योग सत्रों के उद्घाटन के साथ हुआ। ज्येष्ठ मास की सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर रामनगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया। रुदौली विकास खंड की 14 डिजिटल लाइब्रेरियों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी शुरू की गई है, इससे ग्रामीण विद्यार्थियों को गांव में ही अध्ययन सामग्री मिलेगी। और समाचार पत्र दैनिक जागरण के अयोध्या जागरण के अनुसार आज से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय, शुरू होगा पठन पाठन, पहले दिन बच्चों को रोली चंदन लगा

0: कर स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: प्रणाम अयोध्या।
0: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आकाशवाणी अयोध्या से आपने सुना। अब सुबह के 9 बजे हैं। अब हम व्हाट्सएप पर भेजी गई श्रोताओं की फरमाइशें शामिल करते हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में।
5: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
6: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
5: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
6: फोन नंबर 91-61-877-347।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपके संदेश आपके गीत, जो हमारे श्रोताओं ने हमें भेजे हैं अपने संदेश, साथ ही अपने नाम के साथ हमें भेजी है अपनी फरमाइशें। तो आज की फरमाइशें मैं लेकर हाजिर हूँ आराधना। कार्यक्रम होगा 9:30 तक, तो रहिए हमारे साथ और अपनी पसंद को सुनिए अपने नाम के साथ। चलिए कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं, फिल्म है दीवाना और इस गीत को हमारे श्रोता जिन्होंने पसंद किया है वो है बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरबख्श।

जब दोस्तों आपको ऐसे मीठे मीठे और थिरकने वाले गीत सुनने हैं तो आपको अपने दिल को बेकरार जरूर करना पड़ेगा और अपनी पसंद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजनी होगी। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म जब वी मेट से। सुना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। जब भी मिट का गीत आप सबके लिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: श्रोताओ कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कुछ हीट वेव से बचने की जानकारियां आपको दे दें कि आपको क्या करना है, सावधान रहना है। हीट वेव से जो भी चेतावनियां दी जाती हैं उस पर विशेष ध्यान दें। कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई आना, इन सब पर भी विशेष आपको ध्यान देना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। शरीर को हाइड्रेट रखना है, जल की कमी शरीर में नहीं होने देनी है। शरीर को ढककर रखें, यानी हल्के वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र पहने और सूती कपड़ों का विशेष इस्तेमाल करें। यथासंभव अधिक से अधिक अवधि के लिए घर में के अंदर ही रहें, यानी खुली धूप में ना निकले। और कुछ और भी सावधानियां जो आपको बरतनी हैं वो हैं, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को अकेले घर में ना रखें। दिन के समय पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे आदि को बंद रखें और शरीर के तापमान को कम रखने के लिए पंखे, गीले कपड़े इत्यादि का प्रयोग करें। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार गे। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से आप लिखते हैं, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी। धरती कहे पुकार गे इस फिल्म का गीत आप सबने सुनना चाहा है।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मीठे गीतों के माध्यम से हमारी और हमारे श्रोताओं की एक मीठी डोर बंधी हुई है। चलिए, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म तेरे नाम से, और ये मीठे से भजन को सुनना चाहा है खरगोन सरावत मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा, राजकुमार, लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश ने तेरे नाम का ये भजन।

रूदाली। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म का नाम और इसके मीठे से गीत को सुना चाहा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन और हेमंत के साथ धर्मदास ने। रुदाली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी दोस्तों, जब दो लेजेंड मिलते हैं लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका, तो ऐसे ही मीठे गीतों का जन्म होता है। मुकद्दर का सिकंदर, ये है फिल्म का नाम जिसका अगला गीत हम आपको कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं। और इस गीत के लिए हमारे श्रोता हैं बीड शहर महाराष्ट्र से विकास, रेखा।

0: श्रोताओं जिन्होंने अभी तक हमें अपनी फरमाइश नहीं भेजी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत से आराधना को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी पसंद भेजी उनका तहे दिल से शुक्रिया, साथ ही सभी श्रोताओं का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो
4: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
6: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या आप सुनते हैं मंगलवार बुधवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम होगा रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी।

0: Hello and welcome to our live phone-in program. Hello Ayodhya. जहां होती हैं बातें दिल से दिल तक, तो करिए हमसे अपने दिल की बातें 7376 80 40 90 डायल करके. मैं हूं आराधना, आज के आपके कॉल्स को अटेंड करने के लिए. तो मुझसे कहिए हेलो और मैं कहती हूं आपसे, हमारे कॉलर्स से हेलो. चलिए कार्यक्रम का शुरुआत हम करते हैं अपने कॉलर के साथ. देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ा है. हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. अपना नाम बताइए. जी पहले अपना नाम बताइए.
1: धर्मेंद्र.
0: धर्मेंद्र जी कहाँ से? क्या करते हैं आप धर्मेंद्र?
1: खेती बाड़ी करते हैं.
0: खेती में आजकल क्या लगा रखा है आपने?
1: है?
0: खेतों में आजकल आपने क्या लगा रखा है?
1: हेलो, आवाज नहीं आ रही
0: जी. मैंने कहा आजकल आपने खेतों में क्या लगा रखा है? कौन सी
1: आपकी आवाज आ नहीं रही है.
0: चलिए कोई बात नहीं, आपने सबसे पहले बॉर्डर फिल्म का गीत सुनवाने की फरमाइश की है. हम आपको बॉर्डर फिल्म का गीत जरूर सुनवाएंगे. छोटा सा अंतराल हम लेते हैं, उसके बाद आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाई जाएगी. धर्मेंद्र जी फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव. आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध. संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या. फोन 9267988901.
3: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
4: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
3: अब ECHS से इम्पैनल्ड. आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज.
4: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
3: कैशलेस इलाज. आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या. कॉल करें 6386907006.

0: जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे श्रोताओं की फोन कॉल्स की अभाव में हमारा कार्यक्रम सुना सुना है, चलिए कार्यक्रम में अगले कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सत्यम जी। सत्यम वर्मा है, दरियापुर बंजारा अम्बेडकर नगर से।
0: क्या हाल चाल है आपके सत्यम जी?
1: जी बहुत अच्छा है मैम।
0: और क्या करते हैं?
1: काम करते हैं,
0: खेती बाड़ी
1: करते हैं। घूम रहे थे
0: जी,
1: बगीचे में घूम रहे थे
0: जी। जी
1: तो आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो सोचे फोन लगा ले
0: जी।
1: लग भी गया।
0: तो आपने कहा कि आप बगीचे में घूम रहे थे, बगीचे में कौन कौन से फूल लगा रखे हैं आपने?
1: आम का बगीचा है मैम।
0: आम का बगीचा है, क्या बात है। अच्छा, उसकी देख रेख आप खुद करते हैं या किसी को रखा हुआ है?
1: नहीं नहीं, करते हैं, स्वयं करते हैं।
0: स्वयं करते हैं। अच्छा, कौन सी वैरायटी रखी है आपने आम की?
1: दशहरी है।
0: क्या बात है, आपने तो मेरे मुंह में पानी ला दिया और मुझे लगता है हमारे सभी श्रोताओं के मुंह में पानी आ गया होगा। तो आम आपके पक गए हैं, मार्केट में आ गए?
1: जी पक रहे हैं।
0: चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके आम को हमें भी खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। जी सत्यम जी, चलिए आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: जुनून फिल्म का गाना सुनना मैम।
0: जी, कोई खास वजह इस गीत को पसंद करने की?
1: जी अच्छा गाना, इसलिए।
0: चलिए,
1: गाना अच्छा है इसलिए।
0: जी जी जी सत्यम जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गीत हमने चला दिया है, सुनिए और बागीचे का भी आनंद लीजिए।

0: और भाई हम अपने श्रोताओं को मीठे मीठे नगमे सुनाते रहेंगे। चलिए अपने कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: हाँ दीदी, मैं मंदसौर से मनोहर लाल नेहर बोल रहा हूँ।
0: मनोहर लाल जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: दीदी ठीक है सब।
0: और आपके मध्य प्रदेश मंदसौर के क्या हाल चाल है? गर्मी बहुत है।
1: गर्मी क्या, अभी मौसम भी खराब हो रहा है, गर्मी भी चल रही है, पानी आंधी तूफान सब आ रहे हैं दीदी।
0: ओहो, तो बारिश आ गई है तो गर्मी से थोड़ी राहत तो आपको मिली होगी?
1: हाँ हाँ थोड़ी बहुत राहत मिली दीदी
0: जी। अच्छा ये बताइए, आप मनोहर लाल जी करते क्या हैं?
1: क्या दीदी
0: आप करते क्या हैं?
1: मैं तो सोसाइटी में काम करता हूँ दीदी
0: जी। अच्छा आपने हमें पहली बार कॉल किया है?
1: हाँ पहली बार ही कॉल किया दीदी।
0: क्या बात है, तो आज हमें अपना नया कॉलर मिल गया है, नए श्रोता भी मिले, नया कॉलर। श्रोता तो आप हमारे हो सकता है पुराने हैं, लेकिन हमारे कॉलर पहले बने हैं। क्या बात है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप कार्यक्रम में शामिल हो गए। और क्या
1: दीदी, गाना सुनना है दीदी?
0: जी बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम ये गाना सुनवाने का है। कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: वही दुख के सब साथी सुख में ना कोई।
0: क्या बात है, बहुत मीठा भजन है, मोहम्मद रफी जी की आवाज में है। आपका भजन हमने आप तक पहुंचा दिया है, आप सुनिए और अपने सभी सखी साथियों को भी सुनवाइए। कार्यक्रम में शामिल हुए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद दीदी।

0: मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
4: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
3: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
4: और साथ में अपना नाम, पता
3: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
4: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
0: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
5: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: आकाशवाणी अयोध्या से कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या, और हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ चुके हैं और कुछ नए जुड़ने वाले हैं। 7376804090 ये है हमारा नंबर, कोई भी ये जादुई नंबर नहीं है, बहुत ही आसान सा नंबर है और बहुत ही आसानी से लग जाता है। हमारे अगले श्रोता हमारे साथ हैं, हेलो
7: जी। नमस्ते
6: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
7: जी मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागद, जिला उज्जैन से।
6: क्या बात है, तो ये बताइए प्रेम जी, आप पहली बार कॉल किया, आपने पहले भी कर चुके हैं?
7: आकाशवाणी, हाँ जी मैंने पहले 3-4 बार कॉल किया है आकाशवाणी अयोध्या में।
6: जी जी जी, चलिए, और क्या हाल
7: चाल? मतलब आपको बताऊं, 1 जनवरी 2026 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ मोबाइल एप के जरिए और कार्यक्रम सुनता हूँ।
6: क्या बात है, आपको दिन और तारीख भी याद है। ये हमारे जी
7: याद है जी। और आपको बताऊं, जब मेरे जितने भी कॉल कहीं पर भी लगते हैं ना
6: जी,
7: हाँ फोन प्रोग्राम में, उनका मैंने रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है, अपने एक डायरी में बना रखी है।
6: क्या बात है, तो प्रेम जी ये मुझे लगता है कि ये एक सच्चे श्रोता की पहचान है कि जो आपके खास दिन है उनको आपने नोट कर रखा है डायरी में, है ना?
7: हाँ जी जी, चलिए, बहुत समय जी, और तारीख और दिन जिस जहाँ भी जिस भी आकाशवाणी में लगता है ना कॉल, उसको मैंने अपना एक रजिस्टर का मेंटेन बना रखा है। तो 1 जनवरी 2026 से लगाकर अभी तक मेरे मैं अलग अलग स्टेशन पे जुड़ता हूँ, तो मेरे 700 कॉल हो चुके हैं
6: जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रेम जी, कि आप जैसे श्रोता भी हैं और जो इतना डेडिकेटेड मुझे लगता है कि आप अपने फोन कॉल्स के प्रति या रेडियो के प्रति हैं, है ना? अच्छा ये बताइए, आप किस पर सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, फोन पर या रेडियो लगा रखा है?
7: जी मैं मोबाइल ऐप से सुनता हूँ, और इसके अलावा डीटीएच पर भी सुन लेते हैं हम कार्यक्रम, जब घर पे रहते हैं ना
6: जी
7: तो डीटीएच पे मिल जाते हैं, और कहीं बाहर जाना होता है या खेत पे जाते हैं तो मोबाइल पे सुन लेते हैं कार्यक्रम।
6: मोबाइल ऐप पर सुनते हैं, क्या बात है। अच्छा, कितना फायदा हुआ ना कि मोबाइल ऐप हमारी बन गई है, और उस पर कितनी दूर दूर तक देश दुनिया से बाहर भी हम लोग अपने

0: कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल, मोबाइल ऐप पे आने के वजह से आकाशवाणी का नेटवर्क
0: दुनिया में कहीं भी सुन सकते
1: हैं, मतलब हर राज्य के श्रोताओं को हर आकाशवाणी केंद्र सुनने को मिल जाता है।
0: जी जी जी जी, हम बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। चलिए प्रेम जी, आपने क्या पसंद है आज आपकी
1: जुड़ने से? नए नए दोस्त भी हमारे श्रोता मतलब बन चुके हैं।
0: जी, श्रोता भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे नए साथी भी बनते हैं और बहुत सारी जानकारियां हमारे माध्यम से आप तक भी पहुंचती हैं, है ना? जैसे आपने बताया आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो आपके लिए खेती बाड़ी के लिए बहुत सारी सूचनाएं जानकारियां नई नई हर एक रेडियो स्टेशन से मुझे लगता है कि दी जाती हैं, तो आपके लिए लाभप्रद होती हैं, है ना? चलिए प्रेम जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुनना चाहेंगे जाते जाते, बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा फिल्म का नाम है बादल और गाने के बोले जुगनी जुगनी।
0: चलिए, आपकी पसंद का गाना हमने आप तक पहुंचा दिया है और प्रेम जी हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की डेट आप अपने डायरी में नोट करना मत भूलिएगा, ठीक है?
1: बिल्कुल, अभी जाते हैं नोट करना।
0: और नाम भी जरूर नोट करिएगा कि आज आपकी बात आराधना से हुई थी।
1: जी बिल्कुल, आराधना जी, मैं ये भी लिख के रखूंगा कि हमारी बात आकाशवाणी आराधना जी से हुई है।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी अयोध्या से आराधना से बात हुई थी। चलिए, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए।

0: चलिए श्रोताओं, हमें अपने श्रोताओं से मीठी मीठी बातें करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ होती हैं बातें दिल से दिल तक। हमारे श्रोता अपने मन की बात हम तक पहुँचाते हैं और वो बातें हमारे माध्यम से हमारे अन्य श्रोताओं तक पहुँचती हैं। चलिए हमारे अन्य श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। कौन है? हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नाम जान सकते हैं?
1: नमस्कार दीदी।
0: जी नमस्कार, आपका नाम?
1: नाम ब्रज किशोर कुशवाहा।
0: ब्रज किशोर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम गोंदन, जिला दतिया, एमपी।
0: एमपी से क्या बात है, हमारे पास लगातार 3 कॉलर एमपी से हमें मिल गए।
1: हाँ तो लगातार रेगुलर सुनाते होंगे तो फिर तो लगाएंगे।
0: जी
1: अभी
0: जी,
1: तो हमारे इस महीने में लगा है।
0: जी
1: 9 तारीख को लगाया तो वन ऑफ।
0: 9 तारीख को, क्या बात है, आपको भी तारीख याद है। इसके पहले हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी सारी तारीखों को याद कर रखा था, अपने डायरी में नोट कर रखा है। और आप हमारे अगले श्रोता मिले हैं, आप भी आपको भी दिन तारीख याद है। चलिए बहुत अच्छा लगता है ऐसे श्रोता जो हमारे साथ इतने प्यार के साथ जुड़े रहते हैं। चलिए तो ब्रज किशोर जी, आपको क्या सुनवाएं आज के कार्यक्रम में?
1: फिल्म को सुनने

0: सरस्वती चंद्र।
1: सरस्वती चंद्र का, चलिए इसके सभी गाने बहुत ही मीठे बहुत ही प्यारे हैं। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में हम आपको आपका गीत सुनवा रहे हैं, फूल तुम्हें भेजा है। चलिए आप अपने गीत को एंजॉय करिए और अपने साथियों को भी सुनवाइए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: भाई श्रोताओं, हम भी यही कोशिश करते हैं कि आपकी तन्हाइयां हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारे गीतों के माध्यम से दूर होती रहें। चलिए हमारे कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में हमारे अंतिम कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो
1: जी मैम।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
1: जी अंशु नाम है मैम।
0: अंशु जी कहाँ से बोल रही हैं और क्या करती हैं आप?
1: शहादतगंज हनुमानगढ़ी।
0: अयोध्या से?
1: जी मैम।
0: जी क्या हाल चाल है आपके अंशु जी, और क्या करती हैं
1: आप? आप बताइए मैम।
0: जी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, और आप तक पहुंचने की कोशिश हम लोग करते हैं अपने फोन कॉल्स के माध्यम से। और क्या सुनना चाहेंगी आज?
1: मैं वही हिना का गाना सुना दीजिए।
0: हिना का बहुत ही मीठा प्यारा गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मैं हूँ खुश रंग हिना। चलिए अंशु जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास थोड़ा कम है, आपकी पसंद हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, और फिर हमारे कार्यक्रम में शामिल होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जिसे आपने सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। जिन कार्यक्रमों, जो भी श्रोता हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े, उनका तो तहे दिल से शुक्रिया ही, साथ ही हमारे उन सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना और आगे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में हमारा तकनीकी सहयोग दिया स्वप्निल ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल।

अभी आप सुन रहे थे हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 101.9 FM बैंड और न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप एक बार फिर से आनंद लीजिए।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है,
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने ना, जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी, तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्योदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे

0: सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए। या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय, किसी की मुस्क।

0: दोस्तों गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना

0: आपको 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे जनरेशन है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
1: अच्छा।
0: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का

0: खिचड़ी खा लीजिए या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं। या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
0: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है, पर नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का

0: बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घुट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता,
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता
1: है। और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया, और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी,
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी, जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन,
0: एंटरटेनमेंट
1: करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक
1: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई है तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी

0: चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा।
0: शुद्ध होगा।
1: जी जी।
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है

0: नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरा

0: तो दोस्तों गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
1: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
0: प्रति पल
1: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
0: क्या क्या किया,
1: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, को बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
0: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
1: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
0: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
1: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
0: विचलित करेंगी नहीं।
1: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहाँ पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
0: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
1: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
0: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो

0: करते हैं किसी से सीख कर कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देख कर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
1: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देख कर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
0: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
0: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
1: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे, उठे सब के

0: देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम।
1: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही हैं, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा।
1: और फिर से अपना काम करें,
2: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
2: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए।

0: थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं ऑफिस में काम करते करते भी, कोई टिप्स मिल गया बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए। तो
0: सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया

0: और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
0: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, अनोखी अदा ये था फिल्म का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हॉली

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज हुई गीत। अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनके साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशा's लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। 101.9 FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए आप सुनते हैं सरकार के 12 साल ये विशेष श्रृंखला का 15वां अंक।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: हैं वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
1: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
0: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
1: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिव के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिव के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाकर के दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे तरफ उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
0: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
1: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी है उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में, राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की, तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो।

0: सकता है, जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर। तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान यह है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे, उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1,150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम हैं, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा, इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं।

0: मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की

0: 1,00,000 रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2,00,000 रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी, तो 4,00,000 रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5,00,000 रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5,00,000 रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5,00,000 में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5,00,000 रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना हजार रुपए जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा है कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में पूरा बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1,00,000, 2,00,000 जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके 1,00,000 रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या उसकी विशेषताएं हैं? दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर

0: डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी महुआ की हुई है, दो दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये दो दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंका जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने भी बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्यघर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है, कारण उसका यह है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री, तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए तो ऊर्जा दाता बन सकता वो, तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्यघर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी, तो उनको कहा है कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी,

0: राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया। मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy and rebuild trust between the state, enterprise and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction. From earlier, the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society, but more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people

0: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल, ये विशेष श्रृंखला आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आपकी बात कार्यक्रम में,
8: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
7: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें।

0: के संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: लोक रंग सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बब्बन निषाद और साथियों की आवाज में इस लोकगीत के साथ।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंजनी कुमार और साधियों के आवाज में ये लोकगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आप सुन रहे थे अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग 101.9 FM बैंड पर, यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं, प्रस्तुत है फेसबुक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
4: बधाई हो। जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल, और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर, जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदल

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें। कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: कुछ तुमने कहा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतहर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहली फरमाइश हमें मिली है राधा नामदेव की सहारनपुर से, और आज इन्होंने फिल्म आनंद का गीत सुनना चाहा है मुकेश की आवाज में। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूरी, शमसुल कमर राही। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है गंज डुंडवारा से संतोष कुमार राव ने। उमरिया मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहा है। और आइए दोस्तों, आप शामिल कर लेते हैं इसी गीत में अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। विष्णु टेलर दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से, गुलबालोद तहसील आलोड जिला रतलाम एमपी से विक्रम मालवीय, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, पद्मा टाकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, अम्भई जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा। तो आइए सुनते हैं फिल्म आनंद का ये गीत मुकेश की आवाज में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। और कार्यक्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है उसे भेजा है प्रवीण श्रीमाली ने कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन एमपी से। और आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म दीवाना का गीत कुमार सानू की आवाज में। दोस्तों इसी गीत को सुनना चाहा है विनोद मूरत ने जिला उज्जैन बोरखेड़ा पित्रामल से। दोस्तों इसी गीत को सुनना चाहा है साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता ने। और दोस्तों इसी गीत में आइए अब शामिल कर लेते हैं अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, छतपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा, भकर पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद प्रकाश मिड्डा, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा। तो आइए सुनते हैं फिल्म दीवाना का ये गीत कुमार सानू की आवाज में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का गीत कुमार सानू की आवाज में। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में अगली फरमाइश हमें भेजी है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड ने, और आज इन्होंने फिल्म सौतन का गीत सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह ने। इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये ने। और दोस्तों इसी गीत में हम शामिल करेंगे अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। शनिवार पेट बीड शहर महाराज से पोपट राव कुलथे, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा निट्टू, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, गांधीनगर गुजरात से सुरेंद्र सुरेश राठौर, किशनगंज बिहार से रविंद्र दास, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र महाराज से पीएस नाहकर, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा। तो आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म सौतन का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

और दोस्तों कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश हमें मिली है ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर की, और आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म प्रेम रो का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव बांडीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विर्क ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे ने। और दोस्तों अब इसी गीत में हम शामिल करेंगे अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से मोहम्मद यासीन, ग्राम हिंगरी आलोर जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकर नायमा, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाड़ से उमा सिंह, बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कागड़े, गांव लोहरडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत। तो आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
0: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
2: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
0: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
2: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
0: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
2: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
4: साल बेमिसाल
5: बधाई हो।
4: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पन की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर।

दोस्तों कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है सदर बाजार कुरावली से अनिल वर्मा की और आज इन्होंने फिल्म कारवां का गीत सुनना चाहा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल ने और दोस्तों अब इसी गीत में हम शामिल करेंगे

ये अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, गांव अरायन जिला श्री गंगानगर से बनवारी जयपाल, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज अंसारी, पिंगावाला चौक गौराया जालंधर से संदीप कुमार, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, परभड़ी महाराज से रूपेश संघई। तो आइए सुनते हैं फिल्म कारवां का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कारवां का ये गीत, और कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येरे की, और आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म सावन की घटा के गीत आशा भोसले की आवाज में। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है डुमराव बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी ने। इसी गीत को सुनना चाहा है राम सिंहपुर श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है मंजू कटीला से कमल बालूजा ने। और दोस्तों इसी गीत में आइए अब शामिल कर लेते हैं अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। जबलपुर एमपी से माधव नामदेव, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा। तो आइए सुनते हैं फिल्म सावन की घटा का ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

और दोस्तों कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल की और आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म हीर रांझा का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश की है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता ने। इसी गीत को सुनना चाहा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन ने। और दोस्तों अब इसी गीत में हम शामिल करेंगे अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, रानी कामट छिंदवाड़ा एमपी से उदय भान ठाकरे, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेरड़ी एमपी से हुकुम करमरकर, डाबकी रोड अकोला से सदानंद मंदूरकर, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, नई बस्ती गंजू डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से राघव बघेल। तो आइए सुनते हैं फिल्म हीर रांझा का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीर रांझा का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। और कार्यक्रम में अब जो फरमाइश हम शामिल करने जा रहे हैं उसे भेजा है रावर करनाल से विनोद लखनपाल ने। और आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म अंदाज गीत किशोर कुमार की आवाज में। इसी गीत को सुनना चाहा है पंचकुला चंडीगढ़ से रचित खुराना ने। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश की है ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता ने। इसी गीत को सुनना चाहा है चनोरा जिला फिरोजाबाद यूपी से बनवारी लाल कुशवाहा। और दोस्तों आइए अब शामिल करते हैं इसी गीत में अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंसारी। तो आइए सुनते हैं फिल्म अंदाज का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

और दोस्तों इसी गीत के साथ समाप्त होता है आज का कुछ तुमने कहा कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
0: कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पेशकश जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: 35 साल बेमिसाल।
1: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
0: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरी कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पन की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: और दोस्तों, गीतांजलि में आइए अब सुनते हैं गुलामली की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है।

0: तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन जागृति यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि जी सात देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे एआई आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी एआई डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डीपीआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं, और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
4: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ

0: भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक

0: पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, जिसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: 35 साल बेमिसाल।
1: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो,
0: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर, जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
2: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
3: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
2: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
3: फोन नंबर 91-61-877-347।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
5: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
6: श्रोता बहनों नमस्कार, आज मैं हूँ आपके साथ ऊष्मा वर्मा। श्रोता बहनों, आज 16 जून है और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज के दिन 2 जून की रोटी कमाने के लिए हमारे घर के, या यूं कहें कि हमारे देश के बहुत सारे लोग परदेश चले गए और अपने पीछे छोड़ जाते हैं वो ढेर सारा इंतजार जो उनकी माँ, उनके पिता, उनकी पत्नी

0: उनके बच्चे या भाई बहन या उनका पूरा परिवार उनके हिस्से में रह जाता है ये इंतजार। इसी के साथ साथ बहनों उन्हें इंतजार रहता है उन पैसों का जो आए तो बच्चों की फीस जमा हो, खेतों के लिए खाद आए, बूढ़े माँ बाप के लिए दवाइयाँ आए, बाल बच्चों और पत्नी के लिए कुछ साजो श्रृंगार का सामान आए और जो न्योता होता है उसका भी निपटारा किया जाए। बहनों आज वही दिन है जिस दिन विदेशों में या वैसे भी प्रवासी श्रमिकों को यह याद दिलाता है कि वे अपनी भाग दौड़ और मेहनत भरी दिनचर्या में अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार को भेजना ना भूलें। बहनों ये दिवस जितना महत्वपूर्ण प्रवासी श्रमिकों के लिए है वहीं बैंकों में कार्य कर रहे उन लोगों के लिए भी एक जिम्मेदारी का उन्हें बोध कराता है कि वे ऐसे श्रमिकों का पैसा बहुत आसानी से डिजिटली ट्रांसफर करने में उनकी मदद करें। और जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ गांव या शहर में रह रहे अपने परिजनों और उनके साथ साथ उन पशुओं को भी ना भूलें जिन्हें वो यहाँ रहने पर गौ माता कहा करते थे। आज हम अपनी उसी संस्कृत को याद करते हैं और अपनी जो गौ माता जिन्हें हम कहते हैं उनके संरक्षण के लिए सुनते हैं ये वार्ता, गौ पशु का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। वार्ताकार हैं परमात्मा दास जी।
1: हमारे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अमूल्य धरोहरों में से एक अति विशिष्ट, अति प्राचीन एवं सृष्टि काल से युत वैदिक सभ्यता हो या चाहे श्रमण सभ्यता हो, पौराणिक काल हो या ऐतिहासिक काल हो या हो लोक गाथा, सबने अपने समय में अनेक विधि अनेक प्रकार से जिसका महिमा मंडन एवं गायन किया। ऐसे ही एक धरोहर हैं गाय जिसे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि गौ माता का दर्जा दिया गया है, यानी गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं गाय के शरीर में साक्षात देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। गाय हमारे मानव जीवन पथ के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकृत है। धार्मिक सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से गाय का महत्व मानव जीवन के लिए अत्यंत गहरा और बहुआयामी है। गाय को संपूर्ण विश्व की माता माना गया है। वेदों में आया है माता रुद्राणाम दुहिता बसूनाम श्वासादित्याना मृतस्य नाभि प्रणुवोचम चिकितुसे जनाय माम गामनादिति विधुष्ठा। अर्थात गाय रुद्रों की माता है, बसुओं की पुत्री है और आदित्यों की वहन है तथा यह अमृत का केंद्र है जहाँ से सारे विश्व को अमृत प्राप्त होता है। भुक्त्वा त्रयाणि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात् दुग्धम ददति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। अर्थात जो सूखी घास खाकर और जलाशयों की जल पीकर संसार को दूध देने वाली गौ माताएं ही विश्व की माता हैं। इतना ही नहीं गाय को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने स्वरूप कहा है। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, गीता अध्याय 10 श्लोक 28 में श्री कृष्ण कहते हैं, धेनु नाम अस्मि काम धेनु, अर्थात मैं गायों में काम धेनु हूँ। यहाँ भगवान ने गाय को अपना ही दिव्य स्वरूप बतलाया जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जो इच्छा राखे मनमाही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। गाय भगवान का स्वरूप है इसलिए गाय माता से सभी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। जैसे भगवान की सेवा भजन समर्पण कीर्तन से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है वैसे ही गौ माता से हमारी सभी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इसलिए गौ सेवा का महात्म्य वेदों में शास्त्रों में पुराणों में अनेकानेक विधि से उल्लेख वर्णन मिलता है। जैसे राजा दिलीप को गौ सेवा एवं रक्षा के फल स्वरूप संतान की प्राप्ति होती है। कथा आती है रघुवंश महाकाव्य में, राजा दिलीप की कोई संतान नहीं होती है, मन दुखी रहता है। एक दिन गुरु वशिष्ठ से राजा दिलीप मिलते हैं।

अपने मन की व्यथा उनके समक्ष रखते हैं और अपने दुख के निवारण के लिए उपाय पूछते हैं, जैसे दुख दूर किया जा सके। राजा के दुखी मन देखकर गुरु ने राजा दिलीप के सुझाव देते हुए कहा कि एक उपाय है, जैसे आपकी दुख दूर होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी, वह है गौ सेवा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में आप स्वर्ग जा रहे थे तो स्वर्ग जाते समय कामधेनु को आपने प्रणाम नहीं किया था, जिससे आपको निःसंतान होने का शाप मिला था। अतः उस शाप से मुक्ति पाने और संतान की प्राप्ति के लिए आप इस नंदिनी गाय को ले जाइए और तन मन से इसकी सेवा कीजिए। गौ माता की सेवा से आप शाप मुक्त हो सकते हैं और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु आज्ञा मानकर राजा दिलीप नंदिनी गाय को ले जाते हैं। सेवा का नियम लेते हैं कि गौ माता के समय से नहलाना, घास चराना, पानी पिलाना, अन्य जो भी सेवा तन मन से हो करना, और गौ आराम करने लगे तब राजा स्वयं कुछ आहार लेते। बड़े ही समर्पित भाव से मनोयोग से सेवा करने लगे। दोनों प्राणी राजा रानी से सेवक बन गए। सबसे कठिन धर्म का निर्वहन सहज भाव से करने लगे। गाय निरंतर जिधर जाती उसके पीछे पीछे जाते। एक दिन गाय घास चरते चरते हिमालय के तराई में चली गई। वहां रात्रि हो गई। गौ माता की सेवा से निवृत्त हो राजा भी आराम करने लगे। तभी एकाएक गाय के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया। गौ ने आर्त स्वर में जोर से चिल्लाई। राजा दिलीप ने गौ के ऊपर शेर का आक्रमण देख तुरंत धनुष बाण उठाया। गौ के रक्षार्थ हेतु अस्त्र हाथ में धारे के धारे रह गए। वे चला नहीं सके। पूरे शरीर लकवा जैसा हो गया, शिथिल हो गया। अपनी इस दशा को देख राजा बड़ी दुखी हुए। कुछ कर न सकने की स्थिति में आ जाने के बाद राजा ने शेर से बोला, अरे तू कौन पापी है जो इस गौ माता को मारकर खा जाना चाहता है? तभी शेर ने राजा से बोला, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ और इस वन में विचरण करने वाले जीवों को मुझे खाने का अधिकार है। तभी राजा ने निडर होकर बोला, तुझे मांस खाकर पेट भरना है तो इस गौ माता को छोड़ दे, मैं अपना शरीर तुझे न्योछावर करता हूँ, तू मुझे खाकर अपनी क्षुधा तृप्त कर ले। राजा ने अपने आप को सिंह के आगे अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तभी एकाएक शेर गायब हो जाता है और नंदिनी गाय बोली, राजन, मैं तुम्हारी गौ भक्ति पर अति प्रसन्न हूँ और वरदान देती हूँ, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये कोई शेर नहीं था, ये हमारी माया थी। मैं तुम्हारी सेवा भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम परीक्षा में सफल हुए, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसी गौ आशीर्वाद से राजा दिलीप को एक संतान की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर बड़े प्रतापी राजा हुए और रघु नाम से विख्यात हुए। कहने का मतलब है कि गाय का महत्व इतना है, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा रक्षा से राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई। गौ तेज देख प्रभावित हो राजा विश्वरथ तप कर महर्षि विश्वामित्र हो गए। रामचरितमानस में भी आया है कि भगवान राम का अवतार के पीछे एक कारण गौ रक्षा भी है। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणगो पार। अर्थात गौ ब्राह्मण देवता संत महात्मा एवं पृथ्वी के रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं मनुष्य के रूप में। सुर भी सुशील सुरनहित कारी मुनिमन मानस हंस यहारी। यानी गौ माता परम कल्याणकारी, देवताओं के हितैषी और मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाली हंसिनी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला के एक महत्वपूर्ण अंग तो गाय ही है। इतना ही नहीं, जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उसमें एक रत्न कामधेनु गाय भी थी जो समुद्र मंथन से निकली थी। गाय की इतनी महिमा और पवित्रता है कि किसी भी शुभ कार्य में हम गौ की पूजा करते हैं। अगर कोई

0: या गृह निर्माण करता है तो गृह प्रवेश में पहले गौ को ही घर में प्रवेश कराया जाता है। गाय का 108 नामों से पूजन किया जाता है। कुछ गायों का नाम इस प्रकार है, जैसे कामधेनु, कपिला, सुरभि, कल्याणी, वैष्णवी, श्यामा, मंगला, पिंगला, नंदनी, गौतमी इत्यादि। गाय का मुख्य वैज्ञानिक नाम भी कुछ हैं, जैसे बोस्टारस है, तथा भारतीय घरेलू गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गाय का इतना ज्यादा है महत्व कि कई शोधों में यह बात सामने आई है कि गाय के गोबर में रेडियोधार्मी किरणों को यानी अल्फा बीटा गामा को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है। गोमूत्र में जीवाणुरोधी गुण होते हैं और यह कई बीमारियों के उपचार में कारगर हैं। शरीर के शुद्धि के लिए आयुर्वेद में पंचगव्य पान का विधान है, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर तथा मूत्र को मिलाकर बनाया जाता है, जो असाध्य रोगों के निवारण के लिए उत्तम औषधि माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गाय कृषि कार्य में भी सहायक माना गया है। गाय से हमें बैल प्राप्त होते हैं, दूध प्राप्त होते हैं, गोबर से खाद बनते हैं, अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। गाय मानव जीवन के महत्वपूर्ण कण हैं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, हर दृष्टि से गौ का महत्व सर्वोपरि है। गाय हमारे लिए अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय हैं। बिना गौ के मानव जीवन का कल्याण नहीं है, इसलिए गाय की पालन, सेवा, रक्षा तथा पूजा अवश्य होनी चाहिए। गाय हमारी माता है, गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारी धरोहर है।
1: श्रोता बहनों, गौ पशु का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, अभी ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वार्ता हम सुन रहे थे परमात्मा दास जी से, और अब मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: नींव से लेकर छत तक
3: भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
6: ब्रो? ये फटा है,
7: सुन, फटे फटे पुराने नोट को
8: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
6: वाओ, नया नोट मिलेगा?
7: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
8: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: श्रोता बहनों, अब हम बात करते हैं उस सभ्यता और संस्कृति की जो हमारी पहचान तो है ही, साथ ही ये हमें गौरवान्वित होने का एहसास भी कराती है। हम देश विदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी बोली, भाषा, पहनावा, खान पान, सब कुछ वहां से अलग होते हुए भी सभी का मन मोह लेता है। पर बहनों, बेहिचक हम ये कह सकते हैं कि हमें समय के साथ चलने में ये बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं हम पाश्चात्य संस्कृतियों का अंधानुकरण तो नहीं करने लगे, क्योंकि हमारी संस्कृति सिर्फ पहनावे या खान पान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी विविधता में एकता को मजबूत बनाने का एक सेतु है, एक बांध है। हमारे जो पर्व हैं बहनों, हमारा जो त्योहार है, हमारे जो विशेष दिन हैं, उनमें रंग भरने का काम या उन्हें उत्सव में बदलने का काम हमारी संस्कृति ही करती है। बहनों, हम कितनी भी तरक्की कर लें, हम कहीं भी चले जाएं, हम अपना खान पान, बोलीवानी, वेशभूषा भले ही बदल लें, लेकिन हमारे देश की माटी का जो सोंधापन है, हम उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सच पूछिए तो जो कभी ऐसी कल्पना भी हमें करनी नहीं चाहिए। बहनों, ये हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो कला है, जो संगीत की मिठास है, हमें इस पर गर्व करने की जरूरत है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जहां हम अपने सुख की तलाश में गांव में रहते हैं।

श्रोता बहनों, मौसम है गर्मी का और इस मौसम में हम सभी को दही खाना बहुत पसंद है। दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी बनाकर पीते हैं, यानी दही का उपयोग हम लोग खाने में कई तरह से करते हैं। वैसे ही बनो, इस दही का उपयोग अगर हम लोग अपने त्वचा को, अपने चेहरे को निखारने में करें तो बहुत ही सुंदर उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। मैंने त्वचा को निखारने के लिए, ये एक प्राकृतिक चीज है जिसका उपयोग करने से हमें कहीं भी कुछ भी रिएक्शन होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। और जो दही है इसमें लैक्टिक एसिड और जिंक की भरपूर मात्रा होती है जो हमारी त्वचा को प्राकृतिक रूप से सौंदर्य प्रदान करती है। उसके जो दाग धब्बे होते हैं उसको हटाती है और जो हमारी त्वचा है, जो खास करके जो हमारी बहनों की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी त्वचा में थोड़ा कसाव लाती है, उसमें निखार लाती है। तो ये दही हमारे काम की चीज खाने के साथ साथ सौंदर्य के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले बहनो, अगर आप दही को 2 चम्मच दही लें और एकदम सादा दही लेकर के और अपने उसको अच्छे से फेंट लें और अपने हाथों से अपनी गर्दन पर, चेहरे पर ऐसे ही हल्का हल्का सा रब करके पहले से धुल दें। एक तरह से ये क्लीजिंग का काम करेगा। और उसके बाद आप 2 चम्मच दही ले लें, 1 चम्मच चावल का आटा ले लें, और अगर आटा नहीं है, ओट्स है आपके पास, तो आप उसे

0: भी ले सकते हैं। इसको आप हल्के हाथों से गोल गोल जो है अपने चेहरे पर अपने गर्दन पर घुमाते हुए, बस ध्यान ये रखना है कि जब हम अपने हाथ को घुमाएं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ वो राउंड होना चाहिए। ये हमारे मतलब एक तरह से एक स्क्रब का काम करेगा, और ऐसा करते हुए आप 2-3 मिनट तक बस इसे करें और फिर एक सामान्य पानी से इसको धुल दें, तो आपका एक तरह से जो हम फेशियल करते हैं, केवल अगर आप दही का फेशियल कर रहे हैं तो आपके 2 स्टेप इस तरह से पूरे हो जाते हैं, एक क्लीजिंग करने का और एक स्क्रब करने का। अब पारी आती है कि जो आप मसाज करते हैं, तो आप मसाज के लिए दही ले लें, थोड़ा सा उसमें शहद मिलाएं और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लें। इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करें और उस पेस्ट को बहनों अपने चेहरे पर, अपने गर्दन पर, और साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जब हम अपने चेहरे की मसाज करते रहते बहनों, तो बीच बीच में आप अपने हाथ का भी मसाज कर लिया करें, क्योंकि हम हाथ को अलग से समय नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा अपने हाथ पर लगाएं, मसाज करें और फिर अपने चेहरे का मसाज, तो जैसे हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, जैसे हमारे चेहरे का मसाज होता जाएगा, वैसे वैसे उसी के साथ साथ हमारे हाथ का भी मसाज होता चलेगा, जो हमें पता नहीं चलेगा, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको 4-5 मिनट तक करें और उसके बाद एक साथ सामान्य पानी से, बहुत ठंडे पानी से या गर्म पानी से नहीं धुलना है, उसको धुल लें। और अंतिम में आप जो फेस पैक तैयार करें उसको दही ले लें, उसमें हल्का सा नींबू लें और चुटकी भर यानी पिंच भर हल्दी ले लें और उसका एक गाढ़ा सा फेस पैक तैयार करें। वो दही, बस इतना ध्यान रखना है कि उस दही का पानी जो है वो निचोड़ कर जो है वो आप निकाल दें। तो जब उस दही को आप अच्छे से निचोड़ देंगे, उसका पानी निकल जाएगा, तो उसका जो पेस्ट बनेगा वो जो है वो काफी जो है गाढ़ा हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन जो है, आप चूंकि गर्मी का मौसम है इसमें पसीना ज्यादा होता है, तो आप उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं। तो थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिला लें और तब उसको अपने चेहरे पर लगाएं। जब आप उसको अपने चेहरे पर लगाएंगे तो उसको तब तक आपको छोड़ देना है कि जब तक वो सूख ना जाए। एक चीज यहाँ थोड़ी सी सावधानी हम और बरतने के लिए कहेंगे कि जब हम अपने फेस पर फेस पैक लगाते हैं बहनों, तो हमें ऐसा लगता है ना कि बहुत जल्दी है, तो बहुत जल्दी ना करें। बहुत सारी बहनें हमारी ऐसे होती हैं कि उसके लिए पंखा भी चला लेंगी कि बहुत जल्दी से वो सूख जाए, क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचुरल चीज है, उसको आप अपने अंदाज में अपने हिसाब से सेट होने दें। तो जब वो अपने हिसाब से सेट होगा, तो जो हम ये बात कर रहे थे अभी कि हमारे चेहरों में, चेहरे पर जो कसाव होता है वो हमारे फेस पैक से होता है, तो आप ध्यान रखें कि उसे एक्स्ट्रा मतलब कुछ करके सुखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से जब सूख जाए तब उसको हल्के हाथ से छुड़ाएं। एक चीज और कहेंगे कि जब हम फेस पैक छुड़ाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी, जैसे हमने मुल्तानी मिट्टी लगा ली तो बहुत आसानी से नहीं छूटती है, तो हम इसके लिए कहेंगे कि आप उसका हल्का सा अगर घर में है तो रुमाल भिगा लें और उससे पहले उसको गीला कर लें, क्योंकि जब उसको आप एकदम रब करके छुड़ाएंगे तो फिर जो आपके चेहरे का जो कसा होता है वो उसी समय खत्म हो जाता है। तो फिर हम जिस ग्लो की बात करते हैं और जिस कसाव की बात करते हैं, जिसके लिए हम कुल मिला के फेशियल करते हैं, वो बात रह नहीं जाती है। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दें और दही जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं उसे हम फेशियल के तौर पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसका फेशियल करें लेकिन खाने में प्रयोग ना करें, क्योंकि जितना हमको बाहरी चीजों से हम अपने चेहरे को साफ करते हैं, अपने सौंदर्य को का ध्यान रखते हैं, उतनी ही जो आंतरिक चीजें हैं खाने से भी हमें वो चीजें मिलती रहेंगी, तो मुझे लगता है कि जो हमारा सौंदर्य है वो दोगुना हो जाएगा। और गर्मी का मौसम है तो इसमें आपको पानी भी पीते रहना है बहनों, जो हमारे शरीर को तरोताजा रखेगा, हमारे शरीर को नहीं हमारे चेहरे को भी तरोताजा रखेगा। और श्रोता बहनों, कार्यक्रम का हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो फिर इसी कार्यक्रम में इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऊष्मा वर्मा को अनुमति दें, नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988

0: 401 सुना थे सखी सुना थे कार्यक्रम मंगनामा हो वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है।

0: वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं, लेकिन श्रोताओं एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है। तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर यदि आप ध्यान दें तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोयरंग में स्थित है। श्रोताओं आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-4405-59। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।

0: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी

0: एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जो अब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
2: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only 4

0: मेरी तरफ देखो।
1: सू ओनली फोर। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? व्हाट्स 3 डियर?
1: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
0: हाँ हाँ,
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू,
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओ जॉनसी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी

0: के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ हाँ, मैंने देखा। मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही, मिस्टर बेरमन।
2: ओ गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके

0: दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 101.9 FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब आप सुनिए केंद्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को।

0: सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है, और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल। और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी के इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी आपकी
0: खड़ी हो, सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
1: अंतराल का समय हो गया है,
0: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं। तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया, है ना।
1: एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो कि हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए,
1: और इसके जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके

0: कैसे सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: और बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है।
1: हाँ।
0: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
1: समझ के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है।
0: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: हाँ,
0: क्योंकि ये चाटुकारिता में आ जाता है।
1: और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
1: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे, मना कीजिए।
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आती ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर आरती आज तारीफ नहीं की।
0: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती हूँ।
1: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ।
1: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: जी।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
0: हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल। और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वेब फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसीलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल। और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल। और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है। और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यवसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल। उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है। और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है।

0: मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हुई गई है चाय की तरह।
1: जी,
2: जरा नजरों से कह

0: तो दूर के ढोल सुहावने कई बार ऐसा होता ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना वो ऐसी देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल और फिर वापस करो ये करो गुस्सा
1: शुरू हो जाती है
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं कितने कैसा अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हरे चेहरे से चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
0: जी जी जी लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो दोस्ती परिवार एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए तब वो सुंदर लगता है या संभालना

0: अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
1: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
0: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
1: बिल्कुल।
0: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
1: वैसे ही है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
0: लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती की, दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो
1: अच्छी लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी। हाँ, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
0: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में खास करके पति पत्नी में इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करे तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते

0: जो दाम है घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
1: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
1: देखिए, आपका एक आप श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
0: हाँ।
1: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
0: बिल्कुल
1: वो यही चीजें होती है। हर घर की समस्या ही यही है जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
0: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना
1: जी। बिल्कुल,

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि तो लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी, तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही, मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाइट, थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंड

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली है और मिल भी जाती है, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालती हैं, आप नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे। दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था,

मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि मैं ना प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है तो।

0: नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला हूँ। तो मैं कहूँ कि पढ़ती रही तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले आप, मैंने आपसे से सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
1: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
0: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
0: वो समथिंग। हाँ,

0: हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छे थे और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
1: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
0: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
1: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
0: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी और कहानियां रट्टी पट्टी एक ही के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
1: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
1: तो वो फिल्में देख रहे हैं आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आए तो कहने लगे जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया और साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का एक गाना और हो जाए उसमें।
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला,
1: हेमंत कुमार साहब की आवाज,
0: हेमंत कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था।

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक, उनको देखो तो दिल करता था, कई नजर इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद

0: मेरा जी दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: हाँ, बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे मतलब यू नो यूज़ टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वाज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल यार
0: खूब
1: चखा।
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपके एक और फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राजी, और वाकई में मैंने देखा राजी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था इस फिल्म में। क्या आपको संतुष्टि वाली भूमिका निभा करके तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट, उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, ना अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम सुन रहे हैं,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
2: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था। वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन। कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा। जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जेरोकम।
2: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
2: नहीं, आई एग्री विद हिम, वो आई एग्री विद हिम, द बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
2: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम।
1: जी जी।
2: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो। तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन आया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा, इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही था जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं. लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो.
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो. तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अलाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं. तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं तो वो हमेशा पूछती हैं. तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है. तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी. कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है. तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया. तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं. कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के. वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए. तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है. ये नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुलीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती. पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ. मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं. तो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं. तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं. वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हो. मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया. तो फिर वो मुस्कुराने लगे तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी.
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मना सब चलता है. तो फिर वो आई. तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: का हम दोनों का गाना अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम. मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना. उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना.

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो हाँ। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वाज वेरी कॉमिकल, इट वाज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूँ भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा

0: वही था जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल

0: एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी के वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं तो 20 साल बाद, नहीं कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे, तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा तो सुना, उन्होंने मुझे नमस्कार किया, और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे, तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी, वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए, तो नहीं मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में, हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली, मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था, तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का, तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया है, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
0: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपने भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़े, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के एक कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। इस शुरू की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही।

0: पर जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आपकी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह के साथ। साथियों आज है मंगलवार और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं बहुत कुछ खास। जी हाँ दोस्तों आज चर्चा का विषय होने वाला है परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारतीय इतिहास से आप जानेंगे पूर्वी गंग राजवंश के बारे में। उसके बाद होगा आपका पसंदीदा सेगमेंट चक्रव्यूह और साथ ही होंगे मधुर गीत भी। तो आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों 16 जून का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस के रूप में मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेषण या रेमिटेंस क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जब हमारे देश के लोग कमाने के लिए सात समंदर पार यानी विदेशों में जाते हैं और वहां मेहनत करके जो पैसा अपने घर अपने परिवार को भेजते हैं उसी पैसे को प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। ये दिन उन्हीं प्रवासी मजदूरों और कामगारों के नाम समर्पित है जो अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात खून पसीना बहाकर अपने देश और घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन करोड़ों प्रवासियों को योगदान को पहचान देना है और सम्मान देना है जो न सिर्फ अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज दुनिया के हर कोने में कोई न कोई भारतीय या अन्य देश का नागरिक अपनी मातृभूमि से दूर रहकर काम कर रहा है। उनका ये त्याग और मेहनत वाकई तारीफ के काबिल है और 16 जून का दिन हमें इसी बात को याद दिलाता है। और ये पहली बार 2008 में IFAD द्वारा शुरू की गई थी और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया। साथियों विदेशों की अलग संस्कृति में ढलना अपनों से दूर रहना ये उनके लिए बहुत ही कठिन होता है लेकिन अपने घर परिवार देश के लिए वो परिस्थितियों से जूझते हैं फिर भी हार नहीं मानते और अपने काम के प्रति डटे रहते हैं। ये बात हमेशा उनके दिमाग में रहती है कि महीने के आखिरी में घर पैसे भेजने हैं। ये पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या बैंक अकाउंट का नंबर नहीं होता बल्कि ये दूर बैठे एक इंसान का अपने परिवार के प्रति प्यार केयर और जिम्मेदारी होती है जिसने परिवार को एक संबल मिलता है एक सुरक्षा की भावना मिलती है। और दोस्तों अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो विदेशों में रहने वाले प्रवासियों द्वारा भेजा गया जो पैसा होता है किसी भी विकासशील देश के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। और हमारा भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी प्रेषण पाने वाले देशों में से एक है। ये पैसा न सिर्फ हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है बल्कि ये सीधे गांवों और कस्बों के परिवारों तक पहुंचाता है और उसी से लोग वहां अपने जरूरतों का सामान खरीदते हैं जिससे स्थानीय बाजार व्यापार और छोटे उद्योगों को नई रफ्तार मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो विदेशी धरती पर दिन रात खून पसीना बहाकर कमाया गया ये धन सीधे तौर पर देश से गरीबी को मिटाने स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर सुधारने और हमारी अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में एक

मजबूत रीढ़ की हड्डी का काम करता है। और दोस्तों ये भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2026 की थीम है रेमिटेंसेस फॉर रूरल रेजिलियंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण लचीलापन, उद्यमिता और रोजगार के लिए प्रेषण। इसी के साथ दोस्तों चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का, जो है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से गाया है शेखर रवजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन ने, संगीत दिया है विशाल शेखर ने, लिखा है अन्विता दत्त ने।

दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट भारतीय इतिहास से, जिसमें आज हम जानेंगे पूर्वी गंग राजवंश के बारे में। दोस्तों ईस्टर्न गंग डायनेस्टी भारत के गौरवशाली इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसने मुख्य रूप से आज के ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़

और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों पर सदियों तक राज किया। इस राजवंश का शासनकाल लगभग 5वीं शताब्दी से शुरू होकर 15वीं शताब्दी तक चला। इतिहासकार मानते हैं कि इनका स्वर्ण काल 11वीं से 15वीं शताब्दी तक रहा, करीब 1000 वर्ष तक। इस वंश के राजाओं ने न केवल अपनी सीमाएं बढ़ाई बल्कि कला, वास्तुकला, साहित्य और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों

0: और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन्हें पूर्वी गंग इसलिए कहा जाता है ताकि इन्हें कर्नाटक के पश्चिमी गंग राजवंश से अलग पहचाना जा सके, क्योंकि इन दोनों राजवंशों की जड़ें एक ही मानी जाती हैं। दोस्तों, इस राजवंश की शुरुआत राजा इंद्रवर्मन प्रथम के समय में मानी जाती है, जिन्होंने कलिंग नगर को अपनी पहली राजधानी बनाया था, जो आज के समय में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के पास है। शुरुआत में राजा छोटे शासक थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। इस वंश के राजाओं की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ये बहुत अच्छे रणनीतिकार थे। दोस्तों, जब उत्तर और मध्य भारत में कई बड़े साम्राज्य टूट रहे थे, तब पूर्वी गंग राजवंश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा और विदेशी आक्रमणकारियों को कड़ी टक्कर दी। आगे चलकर राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव के समय में इस साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हुआ और उन्होंने अपनी राजधानी को कटक प्रेजेंट में ओडिशा स्थानांतरित कर दिया। अगर इस राजवंश के सबसे महान राजाओं की बात करें तो उनमें अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने लगभग 70 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने ही पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई थी, जो आज भी भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। उनके बाद नरसिंह देव प्रथम इस वंश के एक और बेहद शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने न केवल बंगाल के मुस्लिम शासकों को युद्ध में हराया और उन्हें अपने राज्य से दूर रखा, बल्कि इतिहास में अमर हो जाने वाला कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बनवाया। नरसिंह देव प्रथम को उनकी वीरता के कारण लांगुला नरसिंह देव भी कहा जाता है। पूर्वी गंग राजवंश के समय की वास्तुकला पूरी दुनिया में बेजोड़ मानी जाती है। ओडिशा की प्रसिद्ध कलिंग शैली की वास्तुकला इसी दौर में अपने चरम पर पहुंची। जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर और मुखलिंगम मंदिर भी इसी दौर की दीवारों पर की गई नक्काशी, नृत्य मूर्तियां और देवी देवताओं के चित्र उस समय के कारीगरों की उच्च सोच और कला को दिखाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं थे, बल्कि कला, संगीत और शिक्षा के बहुत बड़े गढ़ हुआ करते थे। गंग राजाओं का प्रशासन बेहद व्यवस्थित था, जिन्होंने अपने साम्राज्य को विषय या पांचली जैसे कई हिस्सों में बांटकर योग्य अधिकारी नियुक्त करे थे। खेतों की सिंचाई के लिए तालाब और नहरें बनवाने से जहां कृषि व्यवस्था मजबूत हुई, वहीं श्रीलंका, जावा और सुमात्रा जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ समुद्री व्यापार करने से राज्य में खूब धन दौलत आई, जिससे ये साम्राज्य प्रशासनिक तौर पर आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध बना। धार्मिक रूप से पूर्वी गंग राजवंश के राजा बहुत उदार थे। शुरुआत में वे भगवान शिव के भक्त थे और खुद को परम माहेश्वर कहते थे, लेकिन बाद में राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव के समय से उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया। उनके राज्य में सभी धर्म फले फूले। जगन्नाथ संस्कृति ने पूरे उड़ीसा को एक सूत्र में बांध लिया। इस काल में शिक्षा, साहित्य और कला की बहुत तरक्की हुई। राजकाज में संस्कृत और तेलुगु के साथ साथ आधुनिक उड़िया भाषा और लिपि का विकास इसी दौर में तेजी से शुरू हुआ। राजाओं ने विद्वानों, कवियों और ओडिसी जैसे पारंपरिक नृत्यों को भरपूर समर्थन व आश्रय दिया, जिससे संस्कृति पीढ़ियों तक सुरक्षित रही। 14वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली सल्तनत और विजयनगर के बाहरी आक्रमणों के कारण ये साम्राज्य कमजोर होने लगा। इस वंश के अंतिम राजा भानुदेव चतुर्थ थे, जिन्हें हराकर उनके ही मंत्री कपिलेंद्र देव ने 1434 से 35 ईस्वी में सूर्यवंश गजपति राजवंश की नींव रखी और इस तरह पूर्वी राजवंश का पतन हुआ। इसी के साथ दोस्तों, ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए लेते हैं छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240044 और 7800037222।
2: असली नोट से क्यों खेल रहा है
3: ब्रो? ये फटा है। सुन,
2: फतेह फतेह पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।

0: नया नोट मिलेगा?
1: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
5: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
6: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
9: दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे अगले और आखिरी सेगमेंट चक्रव्यूह का, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 7 सवाल अलग अलग क्षेत्र से, और उसके सही जवाब का हमें इंतजार रहता है जो आप हमें मेल द्वारा लिख भेजते हैं। तो चलिए, आज फिर मौका है आपके लिए चक्रव्यूह संख्या 609 रचने का, और आप भी तैयार रहिएगा उसे भेजने के लिए। लेकिन थोड़ा ठहर कर सबसे पहले जानेंगे कि चक्रव्यूह संख्या 608 के सवालों को हमारे किन किन श्रोताओं ने भेज रखा है, और इसके लिए हमें श्रोताओं द्वारा भेजे गए मेल को खोलना होगा, तो वो भी हम करते हैं। लेकिन इसके पहले चक्रव्यूह संख्या 608 के सही जवाब जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि किन किन श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है। दोस्तों, पहला सवाल था चक्रव्यूह संख्या 608 का, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? उत्तर था केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ये दूसरा सवाल है, और इसका उत्तर है पल्लव राजवंश। और तीसरा सवाल था दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर है अनुच्छेद 13। और चौथा सवाल था, जब अर्थव्यवस्था में मंदी यानी स्टैग्नेशन और उच्च मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उत्तर है स्टैगफ्लेशन। और पांचवा सवाल था, प्रकाश की किस परिघटना फेनोमेनन के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल के भीतर डाटा का ट्रांसमिशन होता है? इसका उत्तर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है जिन्हें बौद्ध धर्म का पहला संस्कृत नाटककार माना जाता है? उत्तर है अश्वघोष। और सातवां आखिरी सवाल था दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थायी सचिवालय किस शहर में स्थित है? उत्तर है काठमांडू। तो साथियों, ये थे चक्रव्यूह संख्या 608 के सवालों के सही जवाब। अब वक्त आ गया है उन साथियों के नाम बताने का जिन्होंने मेल द्वारा हमें चक्रव्यूह संख्या 608 के सही जवाबों को लिख भेजा है। तो आइए देखते हैं किन किन श्रोताओं ने चक्रव्यूह को भेजा है। सही जवाब हमें लिख भेजा है गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया, खुमेंद्र मसिया ने। दुर्यापुर बाबली महाराष्ट्र से हमें लिख भेजा है गजानन येले, नवदीप येले ने और अशुघोष। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा कविता, पंकज आयुषी और मिहू ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत मयंक, पुष्पांजलि ने। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से हमें सही जवाब लिख भेजा है प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू ने। और दोस्तों, दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें सही जवाब भेजा है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से भेजा है मेल हमें चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल ने। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश

मां करुणा वर्मा ने। दोस्तों ग्राम पंचायत भटीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें सही जवाब लिख भेजा है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, यश प्रयाण, निखिल वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा ने। आकांक्षा कुंज रिसाली भिलाई से हमें सही जवाब लिख भेजा है मुरली नीरा शिवम वर्मा ने। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े ने। अढ़ार नाडघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा ने। ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। और छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पुरेंद्र चंद्राकर, साहिल चंद्राकर ने। तो साथियों ये थे उन साथियों के नाम जिन्होंने हमें मेल द्वारा सही जवाब लिख भेजा था चक्रव्यूह संख्या 608 के सवालों का। और अब वक्त हो चला है दोस्तों चक्रव्यूह संख्या 609 के सवालों का। जी हाँ बिल्कुल, आप पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जो साथी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड पर लगा दें, क्योंकि अब होने वाली है सवालों की बौछार और मैं हर सवाल को दो बार दोहराऊंगी ताकि आपको सवाल क्लियर हो जाए। तो आइए चक्रव्यूह संख्या 609 को रचते हैं। हमारा पहला सवाल है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कौन सा विश्व धरोहर स्थल बनवाया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कौन सा विश्व धरोहर स्थल बनवाया गया था। हमारा दूसरा सवाल है, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2026 की थीम यानी आधिकारिक विषय क्या है। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2026 की थीम यानी आधिकारिक विषय क्या है। हमारा तीसरा सवाल है, भारत ने किसकी कप्तानी में पहली बार आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत ने किसकी कप्तानी में पहली बार आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारा चौथा सवाल है दोस्तों, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से सुनिएगा, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हमारा पांचवा सवाल देखिएगा, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है और यहां पाया जाने वाला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। एक बार फिर से दोहराती हूं दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है और यहां पाया जाने वाला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हमारा छठा सवाल है दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में बिना दावे वाली जमा राशि यानी अनक्लेम डिपॉजिट को ट्रैक करने के लिए आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल कौन सा है। एक बार फिर से सुनिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में बिना दावे वाली जमा राशि यानी अनक्लेम डिपॉजिट को ट्रैक करने के लिए आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल कौन सा है। और अब दोस्तों हमारा सातवां और आखिरी सवाल है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो साथियों ये है चक्रव्यूह संख्या 609 के सवाल, जिसे आपको भेजना होगा अपने सही जवाबों के साथ, और ये आप हमें मेल द्वारा सही जवाब भेजकर कर सकते हैं। तो आइए आपको मेल आईडी बता देती हूँ, हमारी मेल आईडी है yuvvanaiayodhya@gmail.com। साथ ही आपको बता दूं चक्रव्यूह संख्या 610 की प्रसारण तिथि है 23 जून 2026 और मेल भेजने की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। तो देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जल्दी से हमें अपने जवाब लिख भेजिएगा, हमें इंतजार रहता है आपकी मेल का। आशा करती हूँ आप सबने सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं चक्रव्यूह की अगली संख्या में नए सवालों के साथ। इसी के साथ दोस्तों ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए सुनते हैं अब एक प्यारा सा गीत।
जो है फिल्म वेलकम से, गाया है आनंद राज आनंद ने और श्वेता पंडित ने, लिखा

0: दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले दिन के कार्यक्रम की। कल चर्चा का विषय होगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। व्यक्ति विशेष में जानेंगे उत्कल मणि गोपाबंधु दास के बारे में और फिर होगा आपका पसंदीदा खेल संसार और मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी होंगे। इसी के साथ दोस्तों आशा कार्यक्रम अब यहीं पर सम्पन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह को दें इजाजत। नमस्कार।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें।

0: धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: 33 साल बेमिसाल बधाई हो। जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की खोज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर।

0: अभी युवा दोस्त सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, एक चौमासा गीत कांता सरीन और सखियों की आवाज में।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कमला प्रसाद कमल और साथी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज में किसानी गीत।

0: प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
2: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
2: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंके, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
2: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

0: 35 साल बेमिसाल।
1: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो,
0: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर, जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किसानी गीत राजेंद्र यादव और साथियों की आवाज में।
3: छोड़ी नौकरिया तू बनी जा किसनवा सुना।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161873347।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। प्रस्तुत है, क्षमा कीजिएगा, अब आपको लिए चलते अपने दिल्ली केंद्र और सुनवाते हैं समाचारों का बुलेटिन हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियांग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a 2-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Evian, the Prime Minister, in a social media post, said,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व

0: जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
1: जी हाँ दोस्तों, ये वही 33 साल हैं जिनके मध्य हम आपसे होते रहे रूबरू, और बदले में आप सभी ने दिया बहुत सारा प्यार। पूरी शिद्दत के साथ सुना आपने आकाशवाणी अयोध्या को, और इस पूर्व संध्या पर आप सभी को

और इस पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। और साथ ही हम पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जोड़ी नंबर वन से आवाज सोनू निगम और अलका याग्निक की। सुधाकर शर्मा के गीत को संगीत दे रहे हैं हिमेश रेशमिया।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या की शुरुआत 17 जून 1993 को हुई थी और तब से 33 वर्ष आपके मनोरंजन और सूचनाओं के क्रम में लगातार प्रयासरत है। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म इंसानियत की दुश्मन से आवाज है सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की।

0: खुशियां दोस्तों।
1: 33 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी अब समाप्त होता है और थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में। प्रतीक्षा करें।

0: अस्थायी सदस्य वर्ग पर्यन्तमेव परिसीमितो भवति। संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः राजदूतः हरीश पर्वथनेनी महोदयः सुरक्षा परिषदः परिष्कार विषये प्रचलितानां अन्तर सर्वकारीय वार्तालापां सभायाम् एतद् अभ्यधात्। श्री पर्वथनेनी अवदत् यत् परिषदः विस्तारः केवलम् अस्थायी सदस्य वर्गे एव विधीयते, तर्हि सः परिष्कार प्रयासः न केवलम् अपर्याप्तः अपितु वस्तुतः विफलतामेव गमिष्यति, यतः तेन सुरक्षा परिषदः पञ्चस्थायी सदस्यानां विद्यमानायाः निर्णय प्रक्रियायाः अधिकार संरचनायाश्च किमपि मौलिकं परिवर्तनं न परिलक्ष्यते। नवदेहल्यां 2017 विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रमस्य प्रतिभागी सह संवादं कुर्वन् लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला लोकतंत्रे जनसहभागितायाः महत्वस्योपरि बलं प्रदत्तवान्। अध्यक्ष महोदयेन प्रतिपादितं यत् भारतस्य लोकतंत्रं केवलं शासनप्रणाली एव नास्ति, अपितु एषा संवाद सहमति सहभागितानां काचित् जीवित परम्परा अस्ति। महिला हॉकी क्रीडायां न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगले प्रचल्यमानायाः FIH हॉकी नेशंस कप स्पर्धा मालिकायाः उपांत्य चक्रे भारतेन प्रवेशो प्राप्तः। पूल ए इत्यस्य द्वितीये द्वंद्वे भारतीय महिला दलेन जापान दलं 2-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। अस्याः प्रतियोगितायाः पूल ए इत्यस्य अन्तिमे चक्रे गुरुवासरे भारतस्य सम्मुखं उरुग्वे दलं भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन सूचितं यत् अरुणाचल प्रदेशे, असमे, मेघालये, हिमालय पाद प्रदेशे, पश्चिम बंगाले, सिक्किम राज्ये च एतेषु राज्येषु आगामी रविवासर पर्यन्त केषुचित् स्थानेषु तीव्र अतितीव्र च वर्षा संभाव्यते, तथा च तमिलनाडु राज्ये पुद्दुचेरी कराईकल इत्यत्र च आगामी शुक्रवासर पर्यन्त अतिवर्षायाः संभावना वर्तते। ऋतु विभागस्य अनुसारेण अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र स्थलेषु मेघगर्जनेन सह वृष्टिः विद्युत च संभाव्यते। अनेन सह प्रतिहोरा 50 किलोमीटर परिमित वेगेन प्रबल वायुश च संभाव्यते। जनाः आवश्यक जनसंचेतनाः पालयन्तु, ऋतुः विभागस्य निर्देशांच अनुसरन्तु। इति वार्ताः।
1: समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक नक्ता, आवाज है पूर्णिमा की।

0: CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: 33 साल बेमिसाल
3: बधाई हो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
4: और अब आइए सुनते हैं अगला गीत, एक झूमर गीत राम कैलाश और साथियों की आवाज में।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कल्पना बर्मन और सखियों की आवाज में आखिरी गीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाख

0: को जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: पंचो जय हिंद।
4: गोवर्धन भैया।
3: हाँ अरे भैया,
4: देखो खेती किसानी में हम सब मेहनत करे के जरूरत पड़े।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: खास करके साहित जोन बाटे ना भैया,
3: खरीफ की फसल।
4: हाँ, खरीफ वाली फसल अब आई गया है। अब खास करके हमारे जोन भाई दलहनी के रूप में अगर देखा जाए ना, उड़द मूंग की खेती की जाए तो ज्यादा बेहतर रहे।
3: दलहनी की बात किया ना, देखो रहरिया के खेतवा में उड़द मूंग लोग मिलवा खेती करे थे। अब पंचे जो है अरहर अलग बोए दिए थे और उड़द मूंग अलग बोए दिए थे। यह जगह जैसन मर्जी है।
4: हाँ।
3: लेकिन यह है समय टेम बढ़िया है कि उड़द और मूंग की खेती करें की चाहिए।
4: हे भैया, यह समय की बात किया है ना, जुलाई से अक्टूबर माय का जोन बा उड़द मूंग की खेती बढ़िया निकी तना से कीन जा सका था।
3: हाँ बिल्कुल भैया, मतलब जान लो कि यह समय बरसात होता है। बरसात में
4: दिन पहले देखा भाई।
3: हाँ, पानी लाग जाता अगर जम गए, दीदी आई गए जम गए, तो अगर बरसात जम के हो गई अगर पानी लाग गए तो जितना अंकुरण भय बाटे सुखाई जाए,
4: सुखाई जाता।
3: ये लिए माटी जो उपहार रहे, ऊंचास खेत रहे और पानी निकास के व्यवस्थाओं में बढ़िया।
4: हे भैया, माटी के उर्वरा शक्ति जोन बाटे यानी की क्षमता बढ़िया रह के चाहिए और देखा तब बढ़िया मुनाफा मिल पाए कुल मिलाई के
3: यजमान साथ जो है रह के।
4: अच्छा देखा भैया, पानी ज्यादा जहाँ लाग जाता ना तो जोन कातरा गलन ज्यादा हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। ये सचेत रहे की जरूरत है। ये है भैया जुलाई से पहला पखवाड़ा यानी कि उड़द और उर्द मध्य जुलाई से अगस्त के दूसरा सप्ताह में बुआई के बढ़िया तरीका है।
3: बिल्कुल हरि भैया ठीक कहो कि जो है जुलाई के पहला पखवाड़ा में यहाँ उड़द और जो जुलाई के दूसरे पखवाड़ा से लेके अगस्त के दूसरे पखवाड़ा तक है।
4: हाँ भैया,
3: तो ऐसे जो है हम सब उर्द बो दी जाए। लेकिन बात यह है कि जो खेत का माटी है ना बलुई दोमट होए।
4: हाँ, सबसे बढ़िया
3: दोमट होए तो सबसे बढ़िया है। मूल भैया उचास खेत रहे।
4: देखा उचास के बाद तो करबे किया भैया, तो बतिया सही है। पंच भैया इतना जागरूक है। देखा हम तो ये कहा पंच भैया से, उन्नत किस्म के बिया के बहुत जरूरत होते है। जैसे कृषि विशेषज्ञ लोग जो जानकारी देते है यानी की मूंग के अगर जानकारी की जाए प्रजातियन में, पूसा यानी की 1371 है, पूसा 672 है, पूसा विशाल पंत मूंग एक और दुई है।
3: हाँ, बिल्कुल भैया। और उड़द के जो है शेखर एक है, शेखर दुई है, आजाद उड़द एक है, आजाद उड़द दुई है, नरेंद्र उड़द एक है।
4: हे भैया,
3: तमाम तरह का है। लेकिन भैया देखो
4: बोवे का तरीका अलग अलग हुआ था।
3: अरे भैया, बीज के दर अगर नाय वालों पंचे ज्यादा बोए दिए, कम बोए दिए,
4: यही लिए कहा जाता है 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बोए चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल, पंचे भैया सोचे थे कि थोड़े ज्यादा रहे तो ठीक है, बाद में जो है उनका जो है उखाड़ के बराबर कह लीजिए।
4: बोएन बहादुरी नहीं है।
3: बिल्कुल,
4: थायरम 2.5 किलो यानी बीज के या कार्बन यानी कि उपचारित कीन जाए सका।
3: बिल्कुल, यह की बात भैया ना राइजोबियम कल्चर से चाहे पीएसबी यानी फास्फोरस सेलुलाइजिंग और बैक्टीरिया जो होता है ना उसका पीएसबी कहा था, यहू से जो है उपचारित कर ले चाहिए।
4: देखा तरीका अलग अलग है, बस देखा बोआई सीड ड्रिल या देसी हल से कतारन में भी कीन जाए सका था के।
3: बिल्कुल भैया, और पंच भैया देखो मूर में भी सेली बना के भी करे थे।
4: काहे नहीं।
3: लेकिन एक बात ध्यान रखे, कतार से कतार की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर है और बीज की जो गहराई है पंचे विशेष रूप से ध्यान दें कि जो बीज गहरे जात पाए 4 से 6 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरे न होए, नहीं तो अंकुरण में दिक्कत हो जाती है।
4: देखा भाई, एक साथ एक खाद का भी बड़ा महत्व है। खाद कूड़ा न टरे कर्म लिखा टर
3: जाए,
4: मिट्टी के परीक्षण के आधार पर भैया लगभग ही मान के चला 20 किलो यानी की नाइट्रोजन यानी की 40 से 50 किलो फॉस्फोरस ले ला यानी की 20 किलो जो पोटास कुल मिला के मिक्स करके जो बांटे पंच भैया बुआई की जा सके मिला।
3: बहुत सही कहिया भैया। मूल देखो भैया, कहा जाता है ना कि जय किसान के खेत में पड़ा नहीं गोबर वही किसान को जानो दूबर। तो ये लिए भैया ये माटी का बहुत परीक्षण कराओ, बहुत जरूरी है। और ये के बाद जान लो कि माटी का परीक्षण हुआ उसे पता लग जाते कौन सूक्ष्म पोषक तत्व
4: कौन कमी है,
3: पोषक तत्व कितना मात्रा में है और कौन फसल बोए बात है।
4: देखा भैया, हम तो यह कहा कुल मिला के अच्छी लगन मेहनत तरीके अगर जागरूकता के तहत अगर पंच भैया काम करी है, ईमान के चला थोड़े खेतन में अच्छा खासा मुनाफा कमाए के आगे बढ़त चला जाए।
3: बिल्कुल, खरपतवार के नियंत्रण करिए, रोग दो के नियंत्रण करिए तो अच्छी पैदावार हो, अच्छा लाभ उठे।
4: भैया गोवर्धन, एक बात तुम भुलाना है का?
3: अरे

0: भैया
1: अरे भैया पंच भैया
0: कहाँ से बुलावा
1: अच्छा खूब कहा अरे तालाबन में मछली पंच भैया पाले हैं तनी उनकी वार तनी ध्यान दे उनका काउ करे की जरूरत है
0: सेम है यह बहुत बढ़िया तो गर्मी के मौसम में मत्स्य पालकों हेतु समसामयिक कार्य के बारे में जानकारी बताई है आज यह सुनो पंच भैया डॉक्टर अजय कुमार यादव भैया जो उनकी सहायक प्राध्यापक
1: मनोज कुमार पांडे से बातचीत की
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया
1: चलो सुना जाए फिर
2: पंचो अपनी पंचायती के उद्देश्य होत है कि तोरे सब तक अच्छे से अच्छी जानकारी जो समसामयिक हुए और जो तोरे सबका आर्थिक रूप से सक्षम बनावे ये जानकारी दवावे प्रयास हमारे पंचायत के होत है यही क्रम में आज अपनी पंचायती में आवा है डॉक्टर अजय कुमार यादव जो उनके सहायक प्राध्यापक है जल जीव पालन विभाग मत्स्यकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से डॉक्टर यादव साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जैसे कि आज अपने जोन कार्यक्रम के विषय है चर्चा के गर्मी के मौसम में मछली पालकों हेतु समसामयिक कार्य तो सबसे पहले तो हमारे किसान पंचन का ये बताएं कि मछली पालन फायदेमंद पौष्टिक रूप से कैसे
3: इस बेतहाशा बढ़ते हुए जनसंख्या में एनिमल प्रोटीन जिसको जंतु प्रोटीन बोलते हैं इसमें मछली जो हमारा पालन होता है एक सबसे सुलभ और सस्ता जो है रिसोर्स है जो है ताकि जो है हमारी जो भी जनरेशन है जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हम लोग जो है बढ़िया तरीके से प्रोटीन मुहैया करें सके स्वास्थ्य उनका अच्छा हो सके
2: जी बिल्कुल अब एक बात प्रश्न ही पैदा होते ना कि मछली पालन हमारे जो किसान पंच हैं जे अभी तक शुरू ना आए के हैं जेकर बहुत ज्यादा जानकारी ना आए है यहाँ तक वे अगर मछली पालन की चाहते तो कौने हिसाब से के शुरुआत करें
3: जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि ऑनलाइन देख करके तालाब तो अपना चालू कर लेते हैं लेकिन पर्याप्त तो जानकारी के अभाव में प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है उसके अभाव में जो है हमारे मत्स्य पालक बंधु जो है मछली पालन से जो है फायदा नहीं कमा पाते हैं और नुकसान में चले जाते हैं और ये बहुत सारे किसान बंधुओं के साथ ऐसा हुआ है ऐसा ना हो इसलिए जो है हम ये सलाह देना चाहेंगे हमारे सभी मत्स्य पालक बंधुओं को जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं ये बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है बहुत ही प्रॉफिटेबल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं जो भी मत्स्य पालक बंधु इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अपने निकटतम जो है जिला लेवल पे जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनसे जाके संपर्क करें हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी हमारे कॉलेज में भी आकर के हम लोगों से जानकारियां ले सकते हैं जब तक पूरी जानकारी न हो आप लोग इस क्षेत्र में मत आएं जब पूरी जानकारी अच्छी तरह से आप लोग इकट्ठा कर लें उसके बाद ही आप लोग इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएं तो आपको जो है निश्चित तौर पर आप सफल होंगे फेल होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा जो
2: तालाब अगर बनावे का है नया नवा तो कैसे उसका चयन करें
3: जैसे कि अगर हमारे मत्स्य पालक बंधु जो भी नए नए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सबसे पहले जो तालाब बनाने की बात आती है तो हमें स्थान का चयन जो करना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है
2: जी।
3: वो सबसे पहली बात तो जो है ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे जो है बाढ़ का पानी ज्यादा भरता हो
2: जी।
3: जैसे आदमी किसान बंधु हमारे बिना जांच पड़ताल के अगर तालाब बना लेते हैं बारिश ज्यादा हो गई पूरा फ्लड में पूरा सब बह जाता है बहुत नुकसान होता है
2: जी।
3: तो सबसे पहले ऐसी जगह का चयन करें जो जो है ऐसी जगह हो कि वहाँ फ्लड का पानी ना आता हो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ऐसे स्थान का चयन करें जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जहाँ पे बढ़िया तरीके से हो अच्छे से आवागमन की सुविधा हो और तीसरा जो होता है वहाँ पे जो है पानी का रिसोर्स अच्छा हो कोशिश ये करें कि तालाब कुछ सीजनल जो वाटर बॉडी होती है या नदी है या नाला है या बड़ा रिजर्वायर है लेक है उसके आसपास अगर हमारा तालाब इस्टेब्लिश करते हैं उस जगह का चयन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है और उसके बाद चौथा जो होता है हमें जो है बिजली की भी आवश्यकता होती है तो बिजली भी पर्याप्त ढंग से वहां पर पहुंचनी चाहिए और बहुत आसपास जो है चोरी की संभावनाएं न घटित होती हों क्योंकि हमारे मत्स्य पालक बंधु मेहनती तो होते ही हैं कैसे भी करके मछली उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन जो चोर इत्यादि वगैरह होते हैं कभी कोई पॉइजन डाल के चला गया या जाल डाल के चोरी कर लेगा तो इन सब चीजों से जो है फ्री होना चाहिए इन सब का जो है प्रकोप ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए
2: जी।
3: और दूसरी बात जैसे पेरिनियल रिसोर्स होते हैं जो बारहमासी रिसोर्स होते हैं वहां पे तालाब बनाना चाहिए तो मत्स्य पालक बंधुओं को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा उस हमारे जो बारहमासी स्रोत हैं उसमें कुछ जो है सीवेज जाके ना गिरता हो जो भी घरों से वेस्टेज होता है या किसी फैक्ट्री से वेस्टेज उस वाटर बॉडी में तन ज्यादा ना जाता हो, नहीं तो पोल्यूटेड वाटर बॉडी फिर अगर हम उसमें से पानी लेकर के मत्स्य पालन करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा हमारे मत्स्य पालक बंधु,
2: नुकसान संभावना,
3: ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2: चूंकि डॉक्टर साहब गर्मी के मौसम चल रहा और गर्मी के मौसम में हिसाब से हम सभी आहार प्रबंधन करी कि जोने से उनके बढ़वा ठीक ठाक हुए वाले समय में उत्पादन हमें सबका ठीक ठाक।
3: जी आपने बहुत ठीक प्रश्न किया है, जैसे कि हमारे किसान बंधुओं को विदित है कि हमारे मत्स्य पालन में जो है जो भी खर्चा

0: आता है, करीब करीब 60% खर्चा जो है वो फीट का आता है, हमारा जो चारे की लागत का आता है करीब 60% खर्चा। तो इस समय जैसे गर्मी के मौसम में हमारे मछलियों को जो है उपापचय जो होता है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं बहुत तेज हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे पानी का तापमान अगर जो है 38 डिग्री के ऊपर चला गया, 37 डिग्री के ऊपर चला गया है, तब उस दशा में जो है फीड जो है कम कर देना चाहिए। मछलियां फीड खारा कम कर देती हैं, तो हमें जो है जो हम पहले से फीड डाल रहे हैं उसमें से 15-20% फीड हमें कम कर देना चाहिए। और जो हम फीड हमारे मत्स्यपालक बंधु दो टाइम फीडिंग कराते हैं, 10 बजे 11 बजे सुबह कराते हैं, शाम को जो है 4-5 बजे कराते हैं, तो वो टाइम को रिशेड्यूल करके जो है सुबह 7-8 के बीच में कराएं और शाम को जो है 6-7 बजे के बीच में कराएं।
1: अच्छा,
0: और जो राशन हम लोग पर डे के हिसाब से देते हैं दो टाइम बांट के, तो सुबह के टाइम में करीब करीब 60% के आसपास फीडिंग कराएं और जो बाकी 40% अमाउंट बचा है उसको शाम के टाइम फीडिंग कराएं। गर्मी का मौसम है, मछलियां जो है स्ट्रेस में रहती हैं, इस समय जो है अगर फीड में जो है विटामिन सी और ये मिनरल मिक्सचर 2-3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से मिक्स करके देने से मछली में जो है झेलने की ताकत क्षमता आएगी, जो है स्ट्रेस कम होगा और ग्रोथ पे कोई असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, आपने जैसे कहा कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे अभी गर्मी के मौसम में जनरली हमारे फार्मर बंधु क्या करते हैं कि 28% प्रोटीन खिलाते हैं, तो जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको घटा करके हम लोग 24% प्रोटीन वाला फीड खिला सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मछलियों के लिए अच्छा होगा और वेस्टेज फीड का वेस्टेज कम से कम करें गर्मी के मौसम में। जितना ज्यादा फीड वेस्टेज होगा हमारी पानी का कंडीशन उतना ही ज्यादा खराब होगा, आगे और भी चुनौतियां आती हैं।
1: हाँ, प्रदूषण बढ़ जाए उससे समस्या आगे बढ़ जाए। जोन मौसम चलता है एहमा, अगर स्टॉक प्रबंधन हमारे किसान पंचन करे का है तो कौन हिसाब से करें?
0: जैसे कि अभी स्टॉक प्रबंधन करना है कि अभी जैसे हैचरियां जो हमारे मत्स्य पालक बंधुओं के पास जिनके पास हैचरी है, सीड उत्पादन करते हैं, तो क्या करते हैं वो सीड बेचेंगे उत्पादन करें, तो अभी जैसे तापमान अगर इतना ज्यादा जा रहा है तो किसानों को ये करना चाहिए कि जीरा डालने के लिए अवॉइड करना चाहिए 15-20 जून के बाद, जब मानसून बारिश स्टार्ट हो जाती है तब जीरा स्टॉकिंग करे तो अच्छा होगा। और उसके बाद जैसे ज्यादा गर्मी रहता है तो जब पानी ज्यादा गर्म होता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन कम घुलित होती है और हमारी मछली जो है वो घुलित ऑक्सीजन ही अवशोषित करके जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल,
0: तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि जो हमारा तालाब में स्टॉक है तो हमारे तालाब की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो उस भार को झेलने की क्षमता होती है हमारे तालाब में, वो थोड़ा कम हो जाती है। तो जैसे 500 ग्राम और 600 ग्राम के आसपास जो मछलियां हैं उनको आंशिक रूप से निकाल करके नेटिंग करा के उनको सेल आउट कर देनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो थोड़ा सा जो है स्टॉक कम हो जाएगा। जैसे 5,000-7,000 फिंगरलिंग है हमारे तालाब में पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो फिर वो ज्यादा मतलब की दिक्कत का काम नहीं होगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे किसान बंधु क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी का क्राइसिस ही जाता है
1: जी।
0: तो जैसे ही मानसून की पहली बारिश आती है तो पूरा पानी तालाब में ले लेते हैं
1: जी।
0: तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। मानसून बारिश में जो जनरली पहली बारिश होती है वो कई बार एसिडिक रेन होती है, तो उसको जो है तालाब में लेने के लिए अवॉइड करना चाहिए। जो है पहली बारिश के बाद जो भी बारिश है उसको आप तालाब में लीजिए, जो है रिसोर्स अपना उसको यूटिलाइज कीजिए, वो अच्छा होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पीएच मान सही रहा है, खरपतवार की स्थिति एकदम तो खत्म ना हो सकता, लगभग नगण्य है, यही दशा में किसान पंच का काव्य कुछ करे चाहिए जो से कि मछली के उत्पादन पे विपरीत असर न पड़े।
0: जैसे कि रही पीएच की बात, तो पीएच हमें जो है किसान बंधुओं को गर्मी के मौसम में खास करके इसको डेली जो है सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे
1: जी
0: डेली जो है मेजर करना चाहिए। इसके लिए जो हमारे बड़े किसान भाई हैं उनके पास बहुत सारे किसान बंधु जो है पीएच मीटर रखते हैं, जिनके पास पीएच मीटर नहीं रहता है आजकल जो है पैरामीटर किट उपलब्ध है, जो है ऑन साइट जाकर के जो है वो पीएच मेजरमेंट किया जा सकता है, विद इन मिनट हो जाता है, 1 मिनट के अंदर आधा मिनट के अंदर वो हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद बात रही खरपतवार की, जैसे अगर हमारे तालाब में खरपतवार ज्यादा है तो खरपतवार ज्यादा होने की स्थिति में हमारी मछलियां फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाती हैं और स्पेस भी वो खरपतवार लेता है, और दिन में तो वो फोटोसिंथेसिस की मदद से जो है ये ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करता है लेकिन रात में वापस फिर से वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना चालू कर देता है, तो एक प्रकार से हमारी मछलियों के लिए ऑक्सीजन के बारे में कंपटीशन का काम करता है। तो अगर उसको हम लोग जो है उन्मूलन करके रखें खरपतवार वगैरह को तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके उन्मूलन के लिए जो है कुछ जैसे मैनुअली भी कर सकते हैं, लेबर लगा के कर सकते हैं, उससे नहीं पॉसिबल है तो कुछ केमिकल आते हैं उनका भी छिड़काव किया जा सकता है, और अगर आंशिक रूप से है तो कुछ हमारी मछलियां भी आती हैं जो खरपतवार कंट्रोल का काम करती हैं, जैसे ग्रास कार्प है, तिलापिया है, ये भी आंशिक रूप से जो है सिल्वर कार्प है।

0: आंशिक रूप से ये भी खरपतवार नियंत्रण में काफी हद तक मदद करती हैं।
1: जी, मछली असामान्य व्यवहार करे लागे कोनो दशा में, अगर हमें पंचन का लागत है कि ओके व्यवहार ठीक ठाक नाए ना पानी गर्म है जो आप बतायो,
0: जी जी,
1: वही दशा में काव स्कीन जाए कि जोने से मछली उत्पादन पे विपरीत असर न पड़े, यानी उनके व्यवहार सामान्य हो जाए आगे चल के,
0: जी जी,
1: और हमार तालाब जो है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और अपने सबका नुकसान संभावना से बचावा जा सके।
0: जी जी, ये बहुत जरूरी चीज आपने पूछा। जो है आजकल गर्मी के मौसम में सामान्यता देखा जाता है कि ऑक्सीजन की तालाब में बहुत शॉर्टेज हो जाती है, तो मछलियां जैसे सुबह के टाइम पे आप देखेंगे तो ऊपर आकर के जो है सांस लेने लगती है, असामान्य तरीके से तैरती है और उनका व्यवहार बहुत असामान्य हो जाता है। तो ये दो केसेस में होता है, एक तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है और दूसरा कभी कभी जो है मछलियों में अगर कुछ रोग इत्यादि हो जाता है तो उस स्थिति में भी मछलियां ऐसा व्यवहार करती हैं। तो अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको जो है तालाब में के ऊपर जो है बहुत सारे किसान बंधु हमारे एरेटर वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, एरेटर चला देते हैं, ताजा पानी ऐड करना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपने हमारे तालाब पे पहले से ही जो है ऑक्सीजन की टेबलेट आजकल मार्केट में उपलब्ध है, उसको लाके रखना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो एक केमिकल आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, उसको अप्लाई करके भी जो है ऑक्सीजन की समस्या से निदान पाया जा सकता है। रही जो दूसरा सिम्टम्स हमने बताया कि रोग की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो आप देखेंगे जो है कि मछलियां आपको जो है उसमें सैंपलिंग करना पड़ेगा
1: जी।
0: आप देखेंगे मछलियों के शरीर पे चकत्ते रहेंगे, लाल कलर के चकत्ते रहेंगे, कहीं पूंछ थोड़ा बहुत कटी हुई मिलती है, तो उस स्थिति में आप जो है अपने एक्सपर्ट से सलाह लेकर के जो है उसमें आप जो है उसका निदान कर सकते हैं।
1: डॉक्टर अजय कुमार यादव जी, आप हमारे कार्यक्रम आयो, हमारे किसान पंचन का इतने कम समय में इतनी बढ़िया जानकारी उपलब्ध कराए, हम उम्मीद करी थे कि किसान पंचायत से खूब लाभ कमाई है। आपका यह पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हे भैया।
3: हाँ अरे भैया,
2: देखा गर्मी के मौसम में मछली पालकों हेतु समसामयिक कार्य, ये विषय पर जानकारी देते रहे डॉक्टर अजय कुमार यादव भैया, मनोज कुमार पांडे भैया जानकारी लेते रहे। लेकिन एक चीज है भैया, हम यहाँ कहा मछली पालें जरूर भैया, कहे से कि मछली पाला शौक से और रोहू कूदे झमाझम।
3: बिल्कुल, अरे भैया पली है तब ना,
2: अरे पली है का है ना
3: पंच भैया, सुने ठिकाने से, और आशा है कि जो मछली पाले है ना वो बात के ध्यान दिए हुए अपने तालाब में ध्यान दिए तो अच्छा
2: का है ना है,
3: और अच्छे तरह से पैदावार ली। अब बात है भैया देखो,
2: अरे अब समझा था ही तो, अरे एक चीज है मान लो भैया, जैसे जो रासायनिक खाद का दूर भगावे का है और हरी खाद का अपनावे का है।
3: बिल्कुल,
2: अब जो
3: बात है ना, अरे जो उपलब्धि बा यो गिनावे का है
2: भैया, बात तो हर समझ गए। ऐसे में देखो जानकारी लावा है, वह है ध्वनांकन पर आधारित है, भेंटवार्ता है किसान कल्याण की योजनाएं और खेती बचाओ, कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की 12 वर्ष में उपलब्धि, यानी कि एक जानकारी देवे जाता है डॉक्टर अवतिंद्र मिश्र, संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या के वार से राम प्रकाश पांडे भैया इनसे बतियाते हैं। चलो इन्हीं से जाना पूछा जाए।
3: भैया किसान पंच भैया सभी लोग सुनो,
4: पंच देखा अपने सभी तो खेती में काम करी थी, लेकिन सरकार द्वारा इसी तमाम योजना चलाई जाती है ना कि जैसे पंच भैया सीधे लाभ पा सके थे, तो यह जाने के आज हम संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या में उपस्थित है, अवतिंद्र मिश्र भैया से मुलाकात होती है। यह नहीं से अपने सभी जन में ना कि सरकार के द्वारा किसान भैया की तरह कौन कौन योजना चलती है आपका काज।
5: किसान भाइयों को सबसे पहले तो राम राम। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सी लाभार्थी परक योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। जब से योगी जी आए हैं तब से सभी कार्यक्रमों को बड़ा सुचारू ढंग से चलना शुरू हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो पीएम किसान सम्मान निधि है किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी
4: है,
5: बहुत ही सम्मान है। इसमें जो पैसा किसान भाइयों को मिलता है उससे जो हमारे गरीब किसान है, छोटे किसान है जिनके पास बहुत कम जोत है, उनके तीनों मौसम के ऊपर में खाद के लिए बीज के लिए इस पैसे से उनकी काफी उनकी मदद हो जाती है। इसके अलावा तमाम और योजनाएं चलाई गई, सोलर पंप की योजना चलाई गई जिससे किसान भाई अपना सोलर पंप अपने खेत में लगा रहा है, डीजल की बचत हो रही, पर्यावरण के का फायदा हो रहा है।
4: एक बात और, जैसे आप कहने किसान सम्मान निधि तो फार्मर रजिस्ट्री का ही का है
5: इसके बाद फार्मर रजिस्ट्री का कार्यक्रम अभी चलाया गया जिसमें कि सभी किसान भाइयों की जो भी जमीन है जितना भी जमीन उनका है
4: जी,
5: उसमें किसान भाई अपील भी करनी है कि जो कुछ लोग रह गए हैं वो जाकर के अपने फार्मर रजिस्ट्री करा लें, और उसमें जितनी भी उनकी जमीन जनपद के अंदर है जितने भी उसकी डाटा संख्या है उन सबको लेखपाल से जुड़वा लें जिससे कि किसान के हाथ में अपनी जमीन का आंकड़ा उनके पास रहेगा जाएगा और जितने भी सरकारी योजनाएं सभी में फार्मर रजिस्ट्री का भी जरूरी हो गया है।
4: बिल्कुल। एक बात और, यह शायद खेत खाली है सरकार के द्वारा कौन ऐसी योजना है कि माटी के जांच पंच भैया करा लिए, कैसे खेत एकदम खाली चलना है?
5: सभी किसान भाइयों से करना है कि हमारे सभी मंडल के पांचों जनपदों में हमारे पास में जो

0: परीक्षण लैब है, जिन किसान भाइयों को भी अपना मिट्टी का नमूना की जांच करानी है वो अपने मिट्टी का नमूना ले सकते हैं और लेकर के किसी बाकी लैब में दे सकते हैं। उनमें सभी जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, मुख्य तत्व हैं, वो हैं, उनकी जांच हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा भूमि में किस तत्व की कमी है।
1: इससे उनकी लागत घटे और पैदावार बढ़े निश्चित।
0: बिल्कुल, जो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपके भूमि में क्या कमी है, उसी हिसाब से वो संतुलित और पोषक तत्व के जो खाद की मात्रा वो डालेंगे और उससे उनकी खाद की बचत होगी। गर्मी का मौसम है, सभी किसान भाई हरे खाद के रूप में ढैंचे का उपयोग भी कर रहे हैं। हमारे बीज गोदाम से सभी लोग ढैंचे का बीज ले गए हैं और हरी खाद का उपयोग करिए। आने वाले समय में मौसम विभाग की चेतावनी है कि अल नीनो का जो इफेक्ट है शायद बारिश कम हो, तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जो नहर का क्षेत्र उनमें धान लगाएं और जो ऊपर का जगह है वहां पर अगर चाहें धान लगाना जरूरी है तो डायरेक्ट सीडिंग करें। DSR की जो धान की बुवाई है सीधा बिजाई उसकी सीड ड्रिल से करें, अन्यथा वो मक्का है जो हमारे पास में तिल है और ज्वार है, उर्द है, मूंग है, इनकी फसल की तरफ अपने ध्यान को लगाएं,
1: फसल बीमा करावें।
0: जी जी,
1: पैदावार घटे तब वो फायदा पाई है, पैदावार में कोनो नुकसान हुए तब वो पाई है।
0: ये भी केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है और सभी किसान भाइयों से हम ये अपील भी करेंगे कि खरीफ और रबी दोनों मौसम में अपने फसल का बीमा जरूर कराइए। बहुत थोड़ी सी धनराशि आपकी लगती है जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, जाके ब्रांच मैनेजर से कहिए कि, और ये सुनिश्चित करिए कि जो धनराशि ब्रांच मैनेजर ने काटा है वो फसल बीमा के पोर्टल पर अवश्य अंकित हो जाए, जिससे कि उनको फसल बीमा का नुकसान होने की दशा में उनको फसल बीमा का लाभ भी मिल सके।
1: आपसे बात करी थी तो बात तो बढ़ा चली जाता है, जैसे फसल बीमा के बात करें ऐसे पशुधन बीमा होता है, पंच भैया जी जानत आए जिना जानते उनसे का काज है।
0: सभी किसान भाइयों कहें कि बीमा जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे वो खुद का बीमा हो, चाहे उनके पशुधन का बीमा हो, चाहे उनके घर का बीमा हो,
1: क्रेडिट
0: कार्ड भी पशु पे बनता है, सभी और तमाम उनके खातों में बीमा पहले से रहता है जिसकी जानकारी उनको जरूर होनी चाहिए, जिससे कि विपदा के समय में वो उसका लाभ उठा सके।
1: समय बहुत कम है, प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा सा काट।
0: प्राकृतिक खेती बहुत ही बढ़िया है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक गाय भी आप पालते हैं, जो किसान भाई नहीं भी है जिनके पास गाय वो गौशाला से गाय ले सकते हैं और एक गाय के एक दिन के गोबर लगभग 10 से 11 किलो गोबर है, जिससे वो एक एकड़ की खेती आराम से कर सकता है और उसमें जीवामृत है, बीजामृत है, घनामृत है, इस सारी चीजों की व्यवस्था के माध्यम से अपने खेत में वो प्राकृतिक खेती को करे। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना है कि पानी को बचाना है तो पानी को बचाने के लिए खेत में खरपतवार को बचाने के लिए मल्चिंग का जितना हो सकता है उपयोग करे, जरूर मल्च डाले और जितना भी क्रॉप का फसल का अवशेष है उसको किसान भाई मेरा अनुरोध है कि उसको आग ना लगाइए, अपने खेत में डालिए, जिससे मिट्टी की ताकत बढ़ेगी और मिट्टी में जीवाश्म बढ़ेगा तो केचुए लौटेंगे और हमारे खाद उनका उत्पादन जो है अच्छा होगा।
1: खेती बचाओ अभियान पे का काचे क्या सरकार के ऐसा सबसे तगड़ी स्कीम यह दिखाती है ना?
0: 1 जून से लेकर 24 जून तक खेती बचाओ अभियान का कार्यक्रम भी चल रहा है, साथ में कृषि विकसित संकल्प अभियान भी हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंतर्गत सभी जनपद में, एक जनपद में लगभग 90 कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, मंडल में 450 कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से किसानों को जो भी कृषि से जुड़ी हुई योजना उनके बारे में जानकारी दी जा रही है, पोषक तत्व कैसे कम करना है, रासायनिक खादों का उपयोग कम करना है, 10% तेल की बचत करने के लिए उनको को कहा जा रहा है कि अपने उपयोग में 10% कम करें, तिलहन दलहन को बढ़ावा देने की बात हो रही है, गर्मी की जुताई की बात है उसमें और हरी खाद की बात है, और प्राकृतिक खेती के लिए विशेष रूप से 2 दिन का अभियान 18 और 19 जून को हम लोग चलाने जा रहे हैं, जिसमें कि प्राकृतिक खेती पे कार्यशाला होगी और सभी किसान भाइयों को इस बात की जानकारी दी जाएगी। सुबह और शाम दोनों टाइम ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हो, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और तमाम अधिकारी उसमें जा रहे हैं और साथ में किसानों को जागरूक किया जा रहा है खेती किसानी को।
1: बिल्कुल यह तरीके से करिए तो किसान भी स्वस्थ रहिए, माटी भी स्वस्थ रहे और बिल्कुल सरकार का मनसा भी स्पष्ट रहे कि सब सुखी रहे। बिल्कुल, आप रहे संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या और तीन मिश्र भैया, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हरी भैया।
3: हाँ गोवर्धन
2: भैया, भैया ये बाय ध्वनांकन पर आधारित कार्यक्रम सुने कि किसी क्षेत्र में यहाँ मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धि है ना, किसान कल्याण की योजनाएं और खेती बचाओ विषय पे बहुत बढ़िया जानकारी दिए डॉक्टर अवतेंद्र मिश्र भैया, जो उनकी संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या रहे, इनसे राम प्रकाश पाणी भी अवतियात रहे।
3: हे भैया,
2: सुने हुई है, गुने हुई है, वही उपलब्धि है।
3: हे भैया, जहाँ तक खेती बचाए वाली बात है ना,
2: अरे
3: भाई बचाए लेबा खूब निकी तना से, बढ़िया पैदावार होए ठीक से और वह अनाज खावा जाए बढ़िया अपने सबके दे ही लागे।
2: हे भैया, बचाव का मतलब ये है ना कि जो रासायनिक खदिया पड़ा
3: तो करना डरे का है भैया, कम से कम धीरे धीरे कम करे का है,
2: ये नाते कम हुए भैया ना, क्योंकि माटी के जाँच करा ली है, एकदम मृदा परीक्षण हो जाए ना भैया, तो पूरी मात्रा सही सही पता लग जाए माटी में।
3: हाँ,
2: माटी के स्वास्थ्य

0: के पूरी पूरी
1: हाँ, लेकिन भैया जौन कुछ पैदा होता है वो हाँ। भाव ताव हर चीज जानना बहुत जरूरी है।
0: तुम्हारे पास तो है ही है।
1: देखा अयोध्या मंडी के बाजार भाव हाँ, यही मेर से आवा है। चावल कामन यानी कि 3,080 रुपया प्रति क्विंटल है। हाँ, गेहूं दड़ा 2,590, मक्का पीली 2,360, उड़द काली है 9,200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से है भैया।
0: चना देसी 6,400 रुपया, मसूर 7,150 रुपया, अरहली की दाल जो ना 10,900 रुपया, आलू जरका जो ना 890 रुपया, प्याज लाल 1,420 रुपया और टमाटर जो है ना 2,800 रुपया।
1: देखा लहसुन का अगर देखा जाए ना 7,150 रुपया प्रति क्विंटल, तरोई 1,700 रुपया, खीरा यानी कि 2,000, बैगन 2,100 रुपया, हरी मिर्च अगर देखा जाए ना 3,200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।

0: हरी मिर्च अगर देखा जाए ना 3,200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: अच्छा भैया, कद्दू यानी कोहड़ा 940 रुपया, अदरक 9,200 रुपया, और शिमला मिर्च 3,600 रुपया, भिंडी 1,600 रुपया, लौकी 1,680 रुपया, करेला 1,800 रुपया, और भैया फल के वाली चला जाए तो
0: फिर? अरे भैया फल के बार देखा जाए ना, केला पक्का वाला जो है 2,800 रुपया, नींबू 5,900 रुपया, पपीता 2,800 रुपया, सेव यानी कि 12,250 रुपया, अनार 7,300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: आम भैया देखो भैया इसमें हर बात है, आम 3,800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। लिमुला भैया आम आम अलग अलग आम होते हैं, ये ना समझे कि सब जो है बाजार एक के बाद
0: एक मोटा आंकड़ा।
1: हाँ, आ गुड़बट्टी जो है 5,180 रुपया, चीनी जो है 4,130 रुपया।
0: हे भैया लगे हाथ मौसम का भी जानकारी दे चला।
1: बिल्कुल सही बात है, जो उनकी आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी कुमार विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या मुख्यालय मौसम विभाग के वहीं से मिला बाटे जानकारी। तो अधिकतम तापमान 38 सेंटीग्रेड जो कि सामान्य से 0.5 सेंटीग्रेड जो है कम है, और अधिक जो न्यूनतम तापमान है 27.5 है मूल भैया ये सामान्य से 1 सेंटीग्रेड ज्यादा।
0: अच्छा देखा, अधिकतम आर्द्रता 84% है, न्यूनतम आर्द्रता 50%, हवा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा उत्तरी पश्चिमी। आगामी 24 घंटा के बारे में भैया यह अनुमान है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छाए रहे के संभावना, यही के साथ बरखा हुए के तनिको संभावना नहीं पाई जाता है।
1: बिल्कुल भैया तो यही तो आज का कार्यक्रम रहा, फिर भैया मिला जाए नीक बात बत कही गीत गौनाई और अच्छी अच्छी बात खेती किसानी के लेके, और काल भैया मैंने सभी कृषि जगत कार्यक्रम सुनी है, और यही के साथ गोवर्धन भैया का
0: और हरी भैया का आज्ञा दे
1: जय।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन सकेंगे 8:15 से। गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल सुनवाया जाएगा 9:15 से। और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का प्रसारण किया जाएगा 9:30 से 10 बजे तक। राज्य स्तरीय प्रसारण में खेल दर्पण अनुप्रसारित किया जाएगा आज रात 10 बजे से। और अब कल के कार्यक्रम विवरण। कल प्रातः 7:15 से बताया जाएगा दिन भर का कार्यक्रम विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश सुनवाया जाएगा 7:30 से। प्रातः 8:15 से सुन सकेंगे सुर संगम कार्यक्रम। प्रणाम अयोध्या में प्रातः 8:30 से आप सुन सकेंगे आज की बात। विषय होगा विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। भेंट वार्ता अयोध्या एयरपोर्ट की शानदार यात्रा के बारे में जानकारी देंगे निदेशक हवाई अड्डा अयोध्या श्री धीरेन्द्र सिंह। और समाचार पत्रों से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आपके संदेश आपके गीत हम सुनवाएंगे 9 बजे से। सजीव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 9:30 से। कल प्रातः 10 बजे से हम सुनवाएंगे आकाशवाणी अयोध्या के 34वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम विशेष। और विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल सुन सकेंगे 11:55 से। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग हम सुनवाएंगे 12 बजकर

30 मिनट से फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा सुना जा सकता है दोपहर 1 बजे से। गीतांजलि कार्यक्रम सुन सकेंगे 2 बजे से। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगना में 2:30 से सुना जा सकता है। चर्चा विषय होगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला, घरेलू सुझाव में स्वास्थ्य, और उसके बाद 3 बजे से सुनवाया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। कल शाम 5 बजे युवाड़ी कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे चर्चा, विषय होगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। व्यक्ति विशेष में उत्कल मणि, गोपा बंधु दास और खेल संसार। लोक संगीत 5:30 से शाम सुहानी 6:10 से प्रसारित किया जाएगा, और कल शाम 6:30 से अनुप्रसारित किया जाएगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले लीड्स में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। तो श्रोताओं, ये थे कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण, और अब आपको लिए चलते हैं अपने लखनऊ केंद्र, सुनते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: घर सूर्य घर।
5: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते से मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया, और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 1,000,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरी घाट और यहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को

0: नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में सातवें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमान गढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आपको लिए चलते हैं मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर।

0: पाठशाला हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब सुनिए गुलशन बाबरा का लिखा गीत, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, आवाजें किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और आरडी बर्मन की। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

ढीला कुर्ता है पजामा तंग तंग है, ढीला ढीला कुर्ता है पजामा तंग तंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है।

अभी आपने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत सुना। आवाज मोहम्मद रफी की थी, फिल्म का नाम था पतंगा। इस गीत के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं यासर देसाई के गाए गीत से, संगीत चित्रंजन भट्ट का, बोल मनोज यादव के।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आप सुनने वाले हैं जीभ की तपस्या, लेखिका डॉक्टर कुमारी, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: आ गए तुम लोग स्कूल से? देखो तो कैसा मुंह सूख जाता है बेचारों का शाम तक।
1: माँ खूब जोर से भूख लगी है।
0: भूख तो लगी ही होगी रानी बेटी को, आज तो तेरी पसंद की चीज बना कर रखी है मैंने, बेसन के लड्डू।
1: सच माँ?
2: माँ मुझे भी खाने को दे, बहुत भूख लगी है।
3: हाँ बेसन के लड्डू कब बना लिए माँ?
0: अरे ये लोग इतने दिन से पीछे पड़े थे, मैंने सोचा बना ही डालूं। तुम लोग एक दो लड्डू खाकर पानी पियो, तब तक मैं गरम गरम पराठे उतार देती हूँ। हाय राम, ये तो आज फिर खाली पड़ा है कटोरदान।
3: क्या माँ, अरे आज फिर कोई लड्डू खा गया?
0: मैं तो तंग आ गई, ये आखिर तमाशा क्या है? परसों गाजर का हलवा बना के रखा था।

0: वो कोई खा गया, कल ढेर सारे शक्कर पारे कोई खा गया, और आज बेसन के लड्डू। विनोद तूने लड्डू खाए हैं?
1: अरे माँ सीधा तो स्कूल से आ रहा हूँ, मैंने तो सूरत भी नहीं देखी उन लड्डुओं की,
2: और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आज बेसन के लड्डू बनने वाले हैं।
3: मैंने भी नहीं देखे माँ।
0: विनोद सच सच बताना, नहीं तो ऐसी सुताई करूंगी कि अक्कल ठिकाने आ जाएगी। बोल तूने खाए है लड्डू?
1: मेरे ऊपर क्यों शक करती हो माँ, मैंने नहीं खाए तुम्हारे लड्डू।
0: तूने नहीं खाए, जैसे भूत प्रेत खा गए ना।
2: इसी ने खाए होंगे माँ, मीठे का तो ऐसा चीटा है चीटा कि खीर के बर्तन में चिपकता है, जैसे उसी में शहीद हो जाएगा।
1: देखो मीरा दीदी, झूठे नाम मत लगाना, नहीं तो अभी तुम्हारी पोल खोल दूंगा।
3: अरे जा, क्या पोल खोल देगा, बड़ा आया है।
2: कौन खीर के बर्तन में डूब मरने जा रहा है?
0: ये दूसरे आए लड्डुओं के दीवाने, यही खा गया होगा। ऐसा हाथ से निकला है ये लड़का, न तो माँ बाप का ख्याल और न छोटे भाई बहनों का ख्याल। जम गए होंगे सारे लड्डू अकेले बैठकर राहु की तरह।
1: इसी ने खाए लड्डू माँ, तभी इतना खुश है।
2: लड्डू कैसे भाई, खाए तो नहीं, लेकिन अगर बने हो तो जरूर खाऊंगा, और राहु की ही तो रखाऊंगा। क्यों माँ, किस चीज के लड्डू बनाए हैं? बेसन के?
0: हाँ हाँ बेसन के बना के रखे थे, और देर तक खा गए उन लड्डुओं को।
2: माँ कहीं बिल्ली बिल्ली तो नहीं खा गई?
0: अरे इल्ली ना बिल्ली, यही खा गया है रमेश, अब झूठ बोलता है।
2: अरे माँ मैं क्यों झूठ बोलने लगा, मैंने खाए ही नहीं। हाँ सुबह जब बेसन भुना जा रहा था ना, तब बड़ी सोंधी सोंधी खुशबू जरूर आ रही थी।
0: पता नहीं इतने सारे बेसन के लड्डू पता कैसे गया,
2: खुशबू जरूर आ रही थी।
0: ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। हाँ
2: माँ तुम तो जबरदस्ती चिल्लाने लगती हो, किसी पर भरोसा तो तुम्हें है ही नहीं। एक बाबूजी को छोड़कर मैंने लड्डू नहीं खाए हैं।
3: खाए हैं दादा, नहीं खाए हैं।
2: चुप, खाए हैं तो तेरा क्या लिया, खाऊंगा और खाऊंगा, रोज खाऊंगा।
0: चल हट जा यहाँ से, बहन को मारते हैं। खा लिया पी लिया, ऊपर से धौंस जमा रहा है बिचारी पर। जरा तुझे ख्याल नहीं आया कि छोटे भाई बहनों के लिए भी छोड़ दूं? भूख है कि क्या, बिल्कुल राक्षस का पेट पाया है तूने। अरे कुछ तो माँ बाप के गुण लिए होते, अपने बाबूजी को नहीं देखता? पिछले 7-8 साल से फीकी चाय पी रहे हैं, डायबिटीज के मारे कभी मन नहीं चलाते, और एक तू है, ऐसा थोड़ी ही है कि उनको खाने पीने का शौक ही नहीं। लेकिन ये तो संयम की बात है। अरे तूने अपने पेट का ही ख्याल किया होता, बेसन के लड्डू हालत पतली कर देंगे तेरी। अब मजा करो सब, कुछ नाश्ता वास्ते नहीं है।
4: अरे भाई ये क्या तूफान लगा रखा है घर में, जरा महाभारत पढ़ने बैठा तो घर में ही महाभारत मचा दिया है? अरे आखिर क्या तूफान आ गया है
1: बाबूजी मेरे?
4: अरे बोल ना।
1: मेरे बेसन के लड्डू कोई खा गया
3: बाबूजी, ये माँ मेरे ऊपर झूठी चोरी लगा रही है।
4: अरे बाबा अगर खा भी लिए तो कौन सी मुसीबत आ गई है, आखिर बच्चों के लिए ही तो तुमने बनाए थे ना।
0: अरे तो बच्चों को खाने को मिले तब ना, सब तो कह रहे हैं। मैंने तो लड्डू देखे भी नहीं, मैंने तो सूंघे भी नहीं, मैंने तो चखे भी नहीं।
1: माँ बेसन के लड्डू।
0: बेटी चल अभी पराठे खा ले, कल फिर बना दूंगी कनस्तर भर के, सबसे छिपा के रखूंगी।
2: ये माँ की बहुत बुरी आदत है झूठा झूठा नाम लगाने की।
0: चुप होता है कि नहीं, कोई भूत प्रेत थोड़ी ही खा गए?
2: खा गए होंगे, क्या पता,
0: जवाब देना खूब सीख गया है। अगर कभी चोरी करके खाते पकड़ लिया ना, तो ऐसी मरम्मत करूंगी छड़ी से कि।
4: ओहो हो हो, तो क्या गलत कह रहा है वो?
0: कैसी बातें करते हैं आप भी, कह रहा है भूत प्रेत खा गए होंगे।
4: देखो देखो मैं तुम्हें कितना समझाता आया हूँ कि पुरखों के श्राद्ध वगैरह जरा अच्छी तरह से, मेरा मतलब है श्रद्धा से, उदारता से कर दिया करो।
0: अरे तो मुझे क्या मालूम कि आपके बच्चों की ही तरह आपके पुरखे भी भूख मरे हैं।
4: अब जाने भी दो ना जो हुआ सो, तुम तो खामोखा बात का बतंगड़ बना रही हो जब से।
0: पिछले 1 सप्ताह से न जाने क्या हो रहा है, कुछ भी नाश्ता बना के रखूं पलक झपकते गायब हो जाता है। क्या मालूम नहीं बिल्ली ही खा जाती हो, लेकिन ये रमेश बदमाश है, बचपन से ही आदत है मिठाई चुरा कर खाने की। महरी को डांट चुकी, उसके बच्चों का घर में घुसना बंद कर दिया है। खैर आज तो मेरी तरकीब काम कर ही जाएगी, रंगे हाथों चोर पकड़ा जाएगा शाम तक।
5: मीरा मीरा।
3: क्या माँ?
5: मैं जरा सक्सेना चाची के पास जा रही हूँ, अभी आती हूँ।
3: अच्छा

0: अरे क्यों मीरा,
1: क्या?
0: अरे आज छुट्टी का दिन क्या विविध भारती का ही दिन रहेगा? पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोगों को?
1: जी बाबूजी, बस पढ़ने बैठ ही रही हूँ। बाबूजी, बाबूजी, ये देखिए रमेश कोर्स की किताब के नीचे जासूसी उपन्यास रखे हैं।
0: अरे पढ़ते क्यों नहीं हो माई के लाल, इम्तहान सर पर है। भाई सच्ची बात है, आजकल के लड़के तो बिल्कुल चौपट हो गए हैं।
2: बस सब हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़े हैं कल से।
0: अच्छा अच्छा, चलो तुम चुपचाप बैठकर पढ़ो। मीरा, विनोद, मुन्नी सब अपनी अपनी टेबल पर पहुंच जाओ। चलो चलो जल्दी करो। अच्छा,
3: 15 परोपकार सम्राट हुआ है जो अहिंसा में विश्वास रखता था।
1: अबे ए अहिंसा के बच्चे, धीरे धीरे पढ़।
3: अच्छा,
0: बच्चों मैंने भगा दिया है बिल्ली को। तुम लोग पढ़ो, चलो जाओ जाओ जाओ जाओ।
1: बाबूजी कौन सी वाली बिल्ली आई थी? देखो सफेद।
0: अरे बेटा वो बिल्ली नहीं, वो काला मोटा बड़ा भारी बिल्ला था।
1: काला बिल्ला? वो भी मोटा, तभी सारे लड्डू खा गया। लेकिन काला बिल्ला तो आज तक यहाँ दिखने में आया ही नहीं। एक सफेद बिल्ली आकर चक्कर लगाती है यहाँ।
0: ये तो बिटिया, कोई सफेद बिल्ली ने आने का ही ठेका थोड़े ही ले रखा है। तुम लोग भी बेसिर पैर की बातें करते हो, ये नहीं कि जरा मन लगा कर पढ़ाई करो। हाँ, चलो चलो चलो अपना अपना काम करो। चलो
1: चलो भाई चलो।
0: ये क्या है? घास फूस लगती है, पत्तियां। अरे ये तो फलियां हैं, लेकिन ये पत्तियां इस डिब्बे में कैसे आई? देखो, अरे अरे अरे, लगता है मीरा जी मैं आ गई।
1: अरे वाह, आज तो सब बड़ी पढ़ाई में लगे हैं। बाबूजी कहाँ है तुम्हारे? सक्सेना बाबू ने कहाँ कहा है उनसे। माँ माँ, मालूम अभी एक काले बिल्ले ने कटोरदान गिरा दिया था।
4: हाँ माँ, वही आता है रोज मिठाई खाने।
1: काला बिल्ला? काला बिल्ला तो कोई नहीं आता। अच्छा हुआ आज तो उसे धोखा देने के लिए मैंने कटोरदान में कुछ रखा ही नहीं था। भगा दिया था ना उसे?
4: हाँ माँ, बाबूजी ने ही भगा दिया था।
1: अच्छा हाँ, बाबूजी कहाँ है? काम की बात कह ही दूं। अरे ये कंबल ओढ़े आप कैसे लेटे हैं? क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई?
4: अभी तो ठीक थे बाबूजी, खूब अच्छी तरह से हम लोग को डांट रहे थे।
2: अरे माँ, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कंबल हटाने दीजिए बाबूजी। अरे माँ, सच में बाबूजी को तो खूब तेज बुखार है शायद। देखो तो चेहरा कैसा लाल हो गया है।
1: अरे हाँ माँ, पूरे शरीर पर दाने दाने उभर आए, कहीं बित्ती तो नहीं हो गई? देखो तो क्या हो गया, कंबल तो हटाइए। आप ही बच्चों की से जिद करते हैं कभी कभी।
0: अरे अरे, बड़ा बुखार चढ़ रहा है मुझे, सर्दी, कहीं माता या मीजल्स तो नहीं है?
1: आप समझी, बच्चों सब आ जाए यहाँ। ये देखो चोर पकड़ा गया, लड्डू के कनस्तर में हाथ डाला था ना, मैंने उसमें खुजली वाली फलियां और पत्तियां डाल दी थी।
3: क्या बाबूजी, तुमने लड्डू चुराए?
0: अरे ये
1: तो बाबूजी आप ही रोज हम लोगों की मिठाई खा जाते हैं शायद। इतने बड़े होकर बाबूजी,
3: शेम शेम शेम शेम।
2: अरे विनोद लाना तो छड़ी, माँ ने कहा था ना कि चोरी करने वाले की छड़ी से खूब मरम्मत करेंगी।
1: लेकिन आपको सूझी क्या, अपनी तंदुरुस्ती का तो ख्याल रखा होता, कितनी शुगर बढ़ जाती है मीठा खाने से। अगर मन चल ही आया था तो थोड़ा सा मांग लेते ना। कल से सबको डांट पड़ रही है और ये अपने पुरखों का नाम लगाए जा रहे हैं।
0: खुजली, विनोद, मुन्ना, बेटा जरा इधर खुल जाते, जरा मेरे पीछे, जरा मेरे बेटा, जरा पीछे खुल जाते।
1: हां ही नहीं, छुओगे तो तुम्हें भी खुजली हो जाएगी। बाबूजी
0: जरा जोर से खुल जा बेटा।
1: अरे उसी काले बिल्ले को बुला लाओ, पंजे से खूब बच्चे को जाना है। बलिहारी है आपकी बुद्धि की, धन्य है हमारी पतिदेव भी।
0: आप बच्चों के सामने क्यों शर्मिंदा करती हो? ये तो नहीं, अरे ये तो नहीं कि मेरे संयम की तारीफ करो। डायबिटीज के मारे पिछले 8 साल जो मीठा चखा था, क्यों कसम ले लो मुझसे, मेरी इस बिचारी जीभ ने कैसी तपस्या की है इतने साल, कैसी विकट साधना। अरे तुम क्या जानो श्रीमती जी, 8 साल बाद। ओह ओह बेटा, मना मना जा, मेरे बिल्कुल जा बेटा,

जीभ की तपस्या, झलकी आपने सुनी। लेखिका डॉक्टर कुमारी, इसका निर्देशन किया स्वतंत्र कुमार ओझा ने। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
4: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
3: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
4: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
3: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
4: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
3: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे।
5: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की एक कार्यक्रम जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
6: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
6: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
8: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत कुंचन और मैं हूं आपका दोस्त गिरिजेश निषाद। दोस्तों कहा गया है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल हो किसने जाना। और सचमुच इस सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं हमारे फिल्मी गीत। हिंदी सिनेमा और संगीत का रिश्ता ऐसा है जैसे चांद और चांदनी का। फिल्में बदलती रहीं, दौर बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो गीतों की मधुरता जो आज भी दिलों में बसी हुई है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करते हैं फिल्मों और फिल्मी गीतों की, उस अद्भुत दुनिया की जिसने हमारी खुशियों, दुखों, प्रेम, विरह और उत्सवों को सुरों में पिरोया है।

इसी कड़ी में कार्यक्रम का पहला गीत पहुंच चुका है आप तक। फिल्म उम्मीद का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी 1931 की आलम आरा। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में 7 गीत थे और यहीं से शुरू होती है गीत संगीत की परंपरा, जो आगे चलकर और भी ज्यादा मजबूत हुई। फिल्मी गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे, बल्कि समाज का आईना भी बने। कभी देशभक्ति जगाई, कभी प्रेम का संदेश दिया, तो कभी जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराया। किसी ने क्या खूब कहा है, सुरों में ढल जाए तो अल्फाज अमर हो जाते हैं, गीत बनकर दिलों में उतर जाए तो सफर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो जीवन की सच्चाइयों से हमें परिचित कराता है। आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है इम्तिहान।

दोस्तों 1950 और 60 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौर में शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी जैसे गीतकारों ने शब्दों का जादू बिखेरा, तो वहीं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और किशोर कुमार ने अपनी आवाज से उन्हें अमर बना दिया। आज भी जब ये गीत बजते हैं तो यादों का कारवां चल पड़ता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, मजरू सुल्तानपुरी का ही लिखा, फिल्म समाधि का ये गाना जिसे आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर।

0: फिल्म गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन में अभी और भी गाने और कुछ बातें शेष हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत कुंजन आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। जी हाँ, फिल्मी गीतों की एक खास बात यह भी है कि हर मौसम, हर अवसर और हर भावना के लिए हमारे पास कोई ना कोई गीत मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, बारिश हो, होली हो, दोस्ती की बात हो या फिर वैवाहिक समारोह, यही तो फिल्मी गीतों का जादू है जो हर एहसास को शब्द और संगीत दे जाता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो अक्सर वैवाहिक समारोह में बजते हैं और फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना। आवाज कुमार सानू, राधा पोटवाल की।

नमस्कार दोस्तों, तकनीक के बदलते दौर में संगीत सुनने के तरीके भले बदल गए हों, लेकिन उन्हें अच्छे गीतों की लोकप्रियता और आज भी बरकरार है। पुराने गीत हों या नए, अगर उनमें मधुरता और भावनाओं की सच्चाई हो तो वे सीधे दिल तक पहुंचते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, कुछ नगमे उम्र भर का सहारा बन जाते हैं, कुछ गीत यादों का किनारा बन जाते हैं। सुनते हैं जब उन्हें तन्हाई की रातों में, वो दिल के सबसे प्यारे सितारे बन जाते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म तवायफ का, जिसे आवाज दे रहे हैं महेंद्र कपूर।

दोस्तों, हमने कई दौर के गाने आपको सुनवाए, अलग अलग मौकों के गाने सुनवाए। आज के दौर का भी एक गाना हो जाना चाहिए। इस गाने में भी अभिव्यक्ति की भावना है, हाँ अलग अलग अंदाज है। आइए सुनते हैं ये गाना, फिल्म ब्लडी इश्क से आवाज है उषा उथप और जुबिन गर्ग की।

0: तो दोस्तों, फिल्मों और फिल्मी गीतों का ये सुनहरा सफर फिलहाल तो जारी रहेगा, लेकिन आज का सफर बस यहीं तक। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, गुनगुनाते रहिए और जीवन को संगीत की तरह मधुर बनाते रहिए।
1: 35 साल बेमिसाल।

0: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
1: हेलो
2: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
6: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
5: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
6: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
5: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
6: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान।
7: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन समाचार संध्या प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन

0: ऐसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

0: देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने

0: जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south.

0: 26, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France. Also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वह आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आजम नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور
2: समाचारों का बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
5: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
6: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
5: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। बीएड, डीएलएड, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
2: प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल, और कार्यक्रम की पहली गजल पहुंच चुकी है आप तक सोनाली राठौर की आवाज में।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: 33 साल बेमिसाल।
1: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो,
0: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर, जन जन की आवाज।

0: रूप कुमार राठौर की गई इस गजल के साथ ही हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल अब समाप्त होता है।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
0: अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शुरू की घड़ी में इस समय 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800372222।
1: DLED, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। रेडियो की इस जादुई तरंग पर आपका हार्दिक स्वागत करता है आपका रेडियो हम सफर गिरिजेश निषाद। जी हाँ दोस्तों, हमारा आकाशवाणी अयोध्या अपने 33 वर्ष पूरे कर चुका है और इसी विषय पर आज कुछ हमारे श्रोता अगर वो जानकारी रखते हैं तो बातें करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर है, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
3: सर, नमस्कार, रुपेश बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत टिकरी नवाबगंज गोंडा से।
0: जी नमस्कार रुपेश जी, स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और बताइए क्या हाल है?
3: बहुत बहुत एकदम बढ़िया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस की
0: जी।
3: आपको भी और आकाशवाणी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से आकाशवाणी अयोध्या के 33वें स्थापना दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी। 33 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कल से 34वां वर्ष शुरू हो जाएगा। आपको
3: सर जी और मुझे आकाशवाणी अयोध्या सुनते सुनते भी 15-16 साल बीत चुके हैं, तो मतलब 33 वर्ष में आधा वर्ष तो नहीं सुन पाए लेकिन आधा सुने।
0: रुपेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर 14-15 साल से लगातार सुन रहे हैं तो क्या क्या आपने तब्दीली देखी

0: अभी बहुत चेंजेस देखा, पहले तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम 12 बजे शुरू हुआ करते थे, सुबह से ही शुरू होते हैं
1: जी।
0: और मेरा आकाशवाणी अयोध्या से बहुत गहरा नाता है। आकाशवाणी तो हम बहुत पहले से सुन रहे थे, पहले जालंधर सिटी सुन रहे थे
1: जी जी,
0: उसके बाद लखनऊ का प्राइमरी चैनल सुन रहे थे
1: जी।
0: लेकिन जो जगह आकाशवाणी अयोध्या मेरे दिल में रखता है ना, वो दूसरा कोई भी आकाशवाणी का केंद्र नहीं रखता है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी आपका पड़ोसी है और रखना भी चाहिए, है ना। और आप लोग जैसा चाहेंगे बहुत कुछ उसी के हिसाब से हम करना भी चाहेंगे। तो
0: एक तरह से शिक्षक है आकाशवाणी, और हमारा मित्र भी है
1: जी जी।
0: यहाँ जितने लोग कार्यरत हैं सब मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह लगते हैं
1: जी। आकाशवाणी का
0: ऐसा फील होता है कि आकाशवाणी अयोध्या के जितने भी कर्मचारी हैं, बल्कि कर्मचारी ही नहीं बल्कि जितने ऑफिसर हैं, वो सब लोग मुझको सम्मान देते हैं।
1: बिल्कुल स्वाभाविक है, सम्मान तो हर किसी का बनता है, और हमारे सभी श्रोता हमारे लिए प्रिय भी हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे रुपेश जी कि क्या कुछ आपने आकाशवाणी से अब तक हासिल किया है।
0: सुबह जो कार्यक्रम आता है प्रणाम अयोध्या
1: जी,
0: वो बहुत ज्ञानवर्धक होता है। उसमें संजय सर जी की जो वार्ता होती है ना, उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी,
0: वो जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी आकाशवाणी केंद्र से नहीं मिलेगी
1: जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और फिलहाल तो हमारी बातें शायद अगर चलती रही तो ये कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन गाने का
0: खत्म हो जाएगा सर जी। यहाँ आकाशवाणी अयोध्या में क्या है कि ताली दोनों तरफ से बजती है, जितना
1: जी,
0: मैं
1: जी,
0: मान रहा हूँ
1: जी,
0: अपना ही आकाशवाणी के लोग मुझे मान रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने लिस्नर हैं सभी लोगों को जो सम्मान जो प्यार इस केंद्र से मिलता है
1: जी,
0: शायद ही किसी दूसरे केंद्र से मिलता है
1: जी। हम सभी की ये कोशिश रहती है कि हमारे सभी श्रोता हमसे खुश रहें और भरपूर मनोरंजन करें, साथ ही शिक्षा और सूचना का भी हासिल करते रहें, जानकारी लेते रहें।
0: और जानते हैं सर
1: जी,
0: जो क्वालिटी यहाँ के अनाउंसर की है ना, वही क्वालिटी जो वेद भारती के अनाउंसर की है, वही क्वालिटी आकाशवाणी अयोध्या के अनाउंसर की है।
1: ये तो आपने बहुत बड़ी क्या कहें, हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आपने बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। फिलहाल गाना बता दीजिए रुपे जी।
0: बात करने की शैली जो आप लोगों की है ना, वो उन्हीं के समकक्ष है। गाना सर जी सौगंध मूवी का सुना दीजिए। आज आपकी ड्यूटी थी और कल आकाशवाणी अयोध्या का जन्मदिन है
1: जी,
0: तो संयोग बहुत अच्छा था
1: जी जी,
0: इसीलिए आज हम कोशिश किए, नहीं तो अभी हम उस दिन रुकते रहते।
1: चलिए अच्छी बात है, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आपने जो गीत पसंद किया है उसे आवाज दे रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज, जबकि आप प्रशंसक हैं कुमार सानू जी के। कोई बात नहीं, गाना बदल कर भी सुनना चाहिए। तो गाना पहुंचा दिया हमने आप तक, धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारे एक श्रोता बहुत दिनों से हमारे कार्यक्रमों को सुन तो रहे हैं और लगातार कॉल भी करते हैं, लेकिन उनकी कॉल लग नहीं पाती, साथ ही वो देख भी नहीं पाती। तो ऐसे में उनके लिए हम फिलहाल वो लाइन पर है तो उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते सर, विनीता बोल रही हूँ मैं।
0: जी स्वागत है विनीता जी हमारे कार्यक्रम में।
1: मैं सबसे पहले आकाशवाणी अयोध्या को शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
0: जी
1: 34 साल की।
0: जी जी 33 वर्ष पूरे हुए।
1: 34 वर्ष की, और मुझे भी 34 वर्ष हो गए, सुनते सुनते लग जाएगा।
0: क्या बात है, ये तो हम सभी लोगों की खुशनसीबी है कि आप जैसे श्रोता जो शुरुआत से अब तक सुन रहे हैं।
1: पहले सब 5 बजे शुरू होता था प्रोग्राम।
0: जी जी
1: शुरू बात में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और 9 बजे खत्म हो जाता था। तो बहुत दिन गुस्सा आती थी, कितना अच्छी आवाज आती है, सब कुछ आता है, इतना कम समय में ये लोग बजाते हैं।
0: तो लेकिन ये तो आप लोगों का प्यार।
1: धीरे धीरे टाइम बढ़ा उसका।
0: जी जी
1: पहले बेला के फूल वो प्रोग्राम मन भावन।
0: जी जी
1: ये बहुत अच्छे हो, ज्ञान वर्धक सारी बातें। हेलो डॉक्टर
0: जी,
1: मतलब मैं तो क्या बोलूं आकाशवाणी को, मैं ये आकाशवाणी तो जिंदगी है।
0: जी आकाशवाणी आप बहुत दिनों से सुन रही हैं, आपका बहुत पुराना नाता है, आपने बहुत कुछ सीखा और मनोरंजन भी किया, तो जाहिर सी बात है कि आपका आकाशवाणी से विशेष लगाव है, अपनत्व है, और आपने वो जाहिर भी किया। तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: मैं प्यासा सावन फिल्म है
0: जी,
1: उसका गाना है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, और ये मैं अपनी आकाशवाणी को सुनाना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, गाना तो बहुत अच्छा है, लता मंगेशकर की आवाज में, और जी बड़ा संदेश प्रद गीत भी है, तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर।
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्कार, फिर फोन करिएगा, धन्यवाद।
2: और

0: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी ने पूछा क्या चाहिए और हमने कहा बस अच्छे दोस्त चाहिए जो हमें ऑनलाइन अच्छे से बात कर सके। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे
1: सर जी। राजेंद्र गंगवार, कस्बा कलरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सुखी, बरेली, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: जी राजेंद्र जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आपकी कॉल भी लगती रहती है, लेकिन इधर बीच कितने समय बाद लगी होगी?
1: लगभग हम सर जी हमारी 23 तारीख तीसरा महीना सन 2026 को लगी थी, अब जाके कहीं कॉल लगी है सर जी।
0: आपने डेट पूरी नोट कर रखा है। चलिए जी, तो आप बता दीजिए अपने बरेली का हालचाल कैसा है इस समय?
1: सर जी बरेली के हालचाल कोई है जो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्या कहते हैं, गर्मी अभी झेलने पड़ रही है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी बहुत पड़ रही है और ऐसी गर्मी की जिससे हमें बचने की भी बहुत जरूरत है।
1: हाँ जी, और जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, वरना बाहर ही ना निकले क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है। तो अगर बाहर निकलना हो तो सर जी अपने सर पे गमछा रख लें और साथ में हो सके तो बोतल लेके चले।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही हम आपको
1: पानी की वो भी।
0: हाँ राजेंद्र जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी अयोध्या के 33 वर्ष पूरे हो गए और 17 जून 1993 को स्थापना हुई थी आकाशवाणी अयोध्या की, और तब से लगातार
1: आकाशवाणी और आकाशवाणी बरेली और अयोध्या आगे पीछे ही स्थापना
0: जी जी जी जी
1: स्थापना दिवस बरेली का भी है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने, सही कहा।
1: हाँ जी,
0: तो आप ऐसे वक्त पर क्या कहना चाहेंगे, कुछ क्या महसूस करते हैं?
1: सर जी हम तो यही महसूस करते हैं क्योंकि हमें आकाशवाणी से ज्ञान की बातें मिलती है और मनोरंजन होते रहते हैं, और जो खेती बाड़ी में जानकारी मिलती है वो अच्छा लगता है, और जो पढ़ाई के बारे में जानकारी जो प्रोग्राम आते हैं वो भी अच्छे लगते हैं।
0: जी जी, आकाशवाणी का मूल मंत्र है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। जो
1: मनोरंजन
0: है जी, तो हम सभी का प्रयास होता है कि ये सारी चीजें आप तक पहुंचे और आप उसका मनोरंजन तो करें ही, साथ ही जानकारियां भी आपको मिलती रहें। फिलहाल आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: सर जी गाने से पहले दो लाइन कहना चाहते हैं आपसे।
0: बेशक कहिए, लेकिन गाना तो बता दीजिए।
1: गाना मूवी का नाम रहेगा साजन चले ससुराल, गाने के बोल रहेंगे बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नए नए भाई को सॉन्ग है सर जी।
0: जी बिल्कुल,
1: पहले कुछ लाइनें हैं।
0: हाँ बोल दीजिए बोल दीजिए।
1: क्या कहे कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है पर रहा नहीं जाता, दोस्ती हो गई इस कदर आपसे बिना याद ये रहा नहीं जाता, अयोध्या आकाशवाणी को।
0: जी शुक्रिया राजेंद्र जी, और इसी के साथ बाय बाय मिस गुड नाइट, ये गाना पहुंच चुका है आप तक। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
4: योग करिए, निरोग रहिए।
3: तैतीस साल बेमिसाल।
5: बधाई हो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पन की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
6: हर कोई सुन रहा है पर समझता कोई नहीं, रेडियो ही है जो खामोशी भी सुना देता है। और हमारे अब अगले कॉलर जो अपनी आवाज से ही पहचान लिए जाते हैं, सुनते हैं कौन है। हेलो।
7: हेलो सर, नमस्ते।
6: जी नमस्कार। अपना नाम तो आप बता भी ना दे, बताएं ना तो भी लोग जान जाएंगे, लेकिन फिर भी बता दीजिए।
7: जी अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रन्ना, देवकाली रोड, अयोध्या सर।
6: जी तो अर्जुन कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का सुनना कब से आपका शुरुआत हुआ?
7: अरे सर, बहुत अच्छी चीज है, रेडियो सुनते हैं, रेडियो तो काफी दिन से सुन रहे हैं और कल आपका रेडियो का जन्मदिन भी है,
6: स्थापना दिवस।
7: जी
6: जी, 17 जून को ही आकाशवाणी अयोध्या की
7: साल पूरे होके 34 में चले जाएंगे।
6: जी जी जी।

0: बिल्कुल, ऐसे में खुशी होना, खुश होना स्वाभाविक है, और हम सभी सुनने वालों को बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि ऐसे हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें।
1: उसी दिन जिस दिन आज रेडियो का स्थापना दिन हुआ था, उसी दिन मैं रेडियो खरीद के लेके आया था।
0: क्या बात है, इसके लिए आपको वो एक बार फिर से बधाई।
1: 17 जून 1993
0: जी। तो गाना आज कौन सा सुनवा दे अर्जुन जी? अर्जुन जी
1: जी,
0: आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म चरस है सर।
0: चरस,
1: आजा तेरी याद आई।
0: नाम जरूर बुरा है लेकिन गाना बहुत अच्छा है।
1: गाना बहुत अच्छा है सर, मोहम्मद रफी और लता की आवाज है।
0: जी जी, इसमें आनंद बख्शी, आनंद बख्शी की भी आवाज है।
1: जी सर, लक्ष्मीकांत जायसवाल संगीतकार।
0: तो ये गाना अर्जुन जी आप तक पहुंचा दिया हमने
1: जी,
0: और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: सारे आकाशवाणी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई
0: जी। जी, आप सभी सुनने वालों को भी आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। ऐसे ही कॉल करते रहिए, अपने संदेश भेजते रहिए और अपने लगाव, अपने अपनत्व को बनाए रखिए जी। शुक्रिया, धन्यवाद।

दोस्तों हमारे पास शेष 2 मिनट बचे हैं और हमारे एक कॉलर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। इनका गाना तो नहीं सुनवा पाएंगे, फिलहाल बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते, थोड़ा तेज बोल।

0: लिए आवाज कम आ रही है आपकी?
1: रात की तो आवाज आ रही है।
0: हाँ अब आ गई, अब आ गई जी। अपना नाम बता दीजिए।
1: अंतिमा पाल।
0: अंतिमा
1: yes,
0: जी। अंतिमा जी, समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दीजिए, बताइए आप आकाशवाणी के कल स्थापना दिवस के मौके पर कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए।
1: मेरी तरफ से सभी आकाशवाणी वाले सुनने को भाई बहन चाचा चाची दादा दादी को सबको नमस्कार
0: जी,
1: शुभकामनाएं। और आप लोगों की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
0: जी। इसके लिए हाँ अंतिमा जी, आपने जो कुछ कहा उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम ऐसे सुनते रहिए और फिर कॉल लगाइएगा, फिर आपसे बातें होंगी। समय हमारे पास अब नहीं बच रहा है, तो इसी के साथ हम आप सभी दोस्तों से चाहेंगे इजाज़त आज के हमारे इस कार्यक्रम को। आकाशवाणी अयोध्या की ओर से आप तक पहुंचा और अब आपका दोस्त गिरजेश निषाद चाहता है इजाजत।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ केंद्र, सुनते हैं राज्य स्तरीय प्रसारण में खेल तर्पण।
3: खेल
4: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बाबे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और न ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है। डियोगो माराडोना, साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों

की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं, जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: It's time for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव

0: कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
1: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे।
0: जी, जी।
1: तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
0: जी।
1: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में
0: जी, जी।
1: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है
0: जी, जी।
1: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
0: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
1: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था, पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का बहुत फर्क आया हुआ है
0: जी।
1: पहले जो कुश्तियां थी हमारे पास मैट तो थे
0: जी।
1: मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी
0: जी।
1: उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी
0: जी।
1: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते
0: जी,
1: थे
0: जी।
1: मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी है और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी, लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है, जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
0: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
1: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन
0: जी।
1: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है, तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे
0: जी।
1: तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर
0: जी।
1: उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं, बेटा ये आखिरी नहीं है
0: जी,
1: ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा
0: जी।
1: तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, उसको आजकल आधुनिकता की, जैसे मैंने बात की तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल, और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है
0: जी,
1: इससे
0: जी।
1: आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा, उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
0: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग
0: जी।
1: जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है
0: जी,
1: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है, एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स है उसमें

0: नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया, तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर भी, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते। और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशन की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती है।
1: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
0: आज अपने गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है, आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीजों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है, तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है, तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
1: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
0: प्रॉपर ये है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है, हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि मेंटली वो कितना फिट है, उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं। जब गलतियां करेगा और उसका सबसे बड़ा जो चीज होती है, मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है, अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं, अगर ओवरलोड है तो नहीं कर पाएंगे उस चीज को, और गलतियां होती हैं, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
0: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं, हम मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट से आगे हैं, 1-2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है, जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, 1 ओलंपिक में और 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी, हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रही, मेंटली स्ट्रांग थी जी। उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो जितनी आपके पास वो आप वहां पर लगाओ। साक्षी मलिक ने लगाया था, मेडल लाया। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे जी। लास्ट में बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती, तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है, हमें अदर कोच है, जो भी टीम कोच है, वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहाँ पे।
1: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की, तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान? रहा है।
0: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे
1: जी।
0: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं
1: जी।
0: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी, मगर महिला और

0: उत्तर प्रदेश आज के डेट में महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है, बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर। और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं। कुश्ती बहुत अच्छा गेम है, महिलाओं के जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। आप न लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए लेकर आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
0: देखिए, एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है, स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है। 10 साल तक बच्चा हर चीज को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना है कि 10-11 साल की उम्र से आप बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की से प्रॉपर उसको, यहाँ अभी ये प्रोफेशनली तरफ जाना चाहता है
1: जी,
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है, ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं। इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
1: ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में एक दो अंकों के अंतर से मेडल से रह गए थे, उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है, अंतिम पंगाल और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग करती हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा
1: जी।
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियन बहरीन में हुए थे उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए
1: जी।
0: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
1: जी।
0: चंचल सिरोही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीम है, हमारे पास बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: दर्पण। अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय प्रसारण में खेल दर्पण, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
2: बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से

जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।